जिंदगी तब बेहतर होती है दोस्तों जब हम बेहद खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं।

संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होते, छोटी छोटी बातों को समझने से गहरे होते हैं। आईने की कीमत भले ही हीरे से कम हो, पर हीरे के जेवर पहनने के बाद हर कोई खोजता आईना ही है।

दोस्तों, समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना इसमें रिवर्स गियर भी। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, परंतु जिंदगी द्वारा नहीं मिलती, वक्त को बदलने के लिए।

दोस्तों, धीरे धीरे भोर बहुत ही खूबसूरत और सुहानी हो चुकी है, तो मुस्कुराइए और आज के दिन को खूबसूरत बनाइए। इस प्यारे से विचार के साथ ही अब अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। पहली खेप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित मेथेनॉल बांग्लादेश के ढाका स्थित पानगांव बंदरगाह ले जाया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित

ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: दोस्तों आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ. समय हो चला है सुबह के 11:04 और आइए अब चलते हैं हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सजग भारत की तरफ. आज आप सुन पाएंगे इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी को जिसका नाम है न्याय का नया भारत. लेखक प्रीति झंवर और प्रस्तुति है श्रीकांत ओझा और जागृति धर दुबे की. आइए सुनते हैं ये खास कार्यक्रम.
2: ये है आकाशवाणी हैदराबाद.
3: अब आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम सजग भारत.
2: आज सजग भारत के अंतर्गत हम सुनेंगे
3: न्याय का नया भारत.
4: ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, जाने कैसे दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे.
5: अरे रे रे, थोड़ा रुकिए जनाब. अब इस गीत की तरह ये बात भी पुरानी हो चुकी है साहब, क्योंकि अब मेरे भारत के कानून की कई आंखें हैं, कई हाथ हैं, और सबसे बड़ी बात कि अब मेरा भारत सजग हो रहा है, न्याय का नया भारत हो रहा है.
4: 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, एक ऐसा दिन जो दुनिया को याद दिलाता है कि न्याय केवल अदालतों में नहीं बल्कि समाज की हर एक परत में जीवित होना चाहिए. न्याय केवल अदालतों की प्रक्रिया नहीं बल्कि किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ है.
5: हम भारत के लोग अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हैं. यह केवल संविधान की प्रस्तावना का वाक्य नहीं बल्कि उस भारत का सपना है जहां न्याय हर नागरिक तक समय पर और समान रूप से पहुँचे. भारत में पिछले कुछ वर्षों में न्याय व्यवस्था में डिजिटल और प्रशासनिक सुधारों की एक श्रृंखला देखने को मिली है. आज का भारत न्याय व्यवस्था में एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है. कागजों की फाइलों से निकलकर अदालतें अब डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर रही हैं। भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था में लागू न्याय संहिता केवल कानूनों का बदलाव नहीं बल्कि न्याय की सोच और प्रक्रिया में परिवर्तन का एक संकेत भी है. इन संहिताओं ने विशेष रूप से नाबालिगों और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में त्वरित तकनीक सक्षम और पीड़ित केंद्रित न्याय को प्राथमिकता दी है.
4: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में औपनिवेशिक यानी के कॉलोनियल निशानियों को मिटाने वाले ऐतिहासिक कानूनी सुधारों को अमल में लाया गया है. इन कानूनी सुधारों के माध्यम से भारत की दंड उन्मुख यानी के पनिशमेंट ओरिएंटेड व्यवस्था से न्याय उन्मुख अर्थात जस्टिस ओरिएंटेड कानून प्रणाली की शुरुआत हुई है जो नागरिकों को त्वरित, सटीक और जन केंद्रित न्याय प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. नए भारत की आधुनिक न्याय प्रणाली में ई साक्ष्य, ई समन, न्याय श्रुति, NAFIS यानी के नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और ICJS यानी के इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समाहित किया गया है और इसकी अहमियत के बारे में लोगों को जागरूक भी करने का प्रयास जारी है. ये जो सुधार हुए हैं वो सरकार के अनुसार

अधिक पारदर्शी, तकनीकी सक्षम और नागरिक हितैषी बनने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है, जो देश को औपनिवेशिक कानून ढांचे से बाहर निकालकर आधुनिक न्याय व्यवस्था

0: 2030 तक सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो और अगले 5 वर्षों में देश भर में फॉरेंसिक लैब की संख्या बढ़ाने के लिए 30,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। सन 2029 तक देश के हर राज्य में या तो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी या सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होगी। बताया जा रहा है कि 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले सभी मामलों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया जाएगा, जिससे कि साक्ष्यों की गुणवत्ता बेहतर हुई है और न्यायिक निर्णय अधिक सटीक हो रहे हैं। सरकार ने न्याय प्रणाली के 5 स्तंभों यानी कि पुलिस, कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक और प्रोसिक्यूशन का पूर्ण आधुनिकरण किया है। देश भर के अदालतों और जेलों के लिए एकीकृत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पोर्टल ने न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है।
1: साथियों, न्याय केवल अदालतों के फैसले का नाम नहीं है। न्याय तब पूरा होता है जब पीड़ित को समय पर राहत मिले, अपराधी को कानून के अनुसार सजा मिले और आम नागरिक को व्यवस्था पर भरोसा हो। इसी सोच के साथ देश में आपराधिक न्याय व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए, जिन्होंने औपनिवेशिक दौर के आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट का स्थान लिया है। इसके अंतर्गत पहला बड़ा बदलाव, अब अपराध की रिपोर्ट केवल थाने जाकर ही नहीं बल्कि कई मामलों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। जीरो एफआईआर को कानूनी मान्यता दी गई है, यानी घटना चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, पीड़ित निकटतम थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। बाद में मामला संबंधित थाने को भेज दिया जाता है। इससे विशेष रूप में महिलाओं, बच्चों और यात्रियों को तत्काल सहायता मिलने का रास्ता आसान होता है।
0: दूसरा बड़ा बदलाव, जिन अपराधों में 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, वहाँ घटना स्थल की फॉरेंसिक जांच को अधिक महत्व दिया गया है। उद्देश्य है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच मजबूत हो और दोषियों के बच निकलने की संभावना कम हो। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन, डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य, वीडियो रिकॉर्डिंग और तकनीक आधारित जांच को अधिक स्पष्ट कानूनी आधार दिया गया है। इससे साइबर अपराध जैसे नए प्रकार के अपराधों की जांच को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथियों, केवल कानून बदलना ही पर्याप्त नहीं होता है, व्यवस्था भी बदलनी पड़ती है।
1: इसी उद्देश्य से ई कोर्ट्स CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जैसे के डिजिटल व्यवस्थाओं का विस्तार किया गया है। इनके माध्यम से पुलिस, अदालत, जेल और फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान पहले की तुलना में अधिक तेज और व्यवस्थित हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि न्याय व्यवस्था केवल दंड देने की व्यवस्था नहीं बल्कि नागरिकों को समय पर न्याय दिलाने का माध्यम होनी चाहिए। नए कानूनों का उद्देश्य भी यही बताया गया है, व्यवस्था अपराधी केंद्रित नहीं बल्कि न्याय केंद्रित बने।
0: आम नागरिक को इन सब से बहुत लाभ हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में 2 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में नए कानून के तहत त्वरित कार्रवाई की गई है। यह मामला सरकार द्वारा नए कानूनों की कार्य प्रणाली के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। जून 2025 में दिल्ली के बवाना क्षेत्र में 2 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कुछ ही दिनों में आरोपी को गिरफ्तार किया, 10 दिन में चार्जशीट दाखिल की, 1 महीने के भीतर आरोप तय हुए और लगभग 9 महीने में अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह मामला फॉरेंसिक साक्ष्य, समयबद्ध जांच और त्वरित सुनवाई का उदाहरण माना गया। महाराष्ट्र में डिजिटल पुलिसिंग का असर दिखाई दिया, हजारों जीरो एफआईआर दर्ज हुई और 1,30,000 से अधिक मामलों में समयबद्ध चार्जशीट दाखिल की गई।
1: चंडीगढ़ में नए कानूनों के बाद मुकदमों के निपटारे की गति बढ़ी और दोष सिद्धि तक पहुंचने का औसत समय करीब 300 दिन से घटकर 110 दिन रह गया। आज देश की लगभग 22,000 अदालतें डिजिटल नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं और 1,000 से अधिक मोबाइल फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं जांच को वैज्ञानिक आधार दे रही है। 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा कि

0: दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल गई है और इसी के अंतर्गत पीड़ित यानी कि विक्टिम के अधिकार को प्राथमिकता दी गई।
1: पहले आपराधिक मामलों में ध्यान मुख्यतः अपराधी और मुकदमे की प्रक्रिया पर होता था। अब पीड़ित को FIR के प्रति मामले के प्रगति की जानकारी और कुछ मामलों में अभियोजन वापस लेने से पहले उसकी बात सुनने का अधिकार दिया गया है। इसे सरकार न्याय केंद्रित विक्टिम सेंट्रिक दृष्टिकोण का उदाहरण बताती है। EFIR और डिजिटल प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ मामलों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत दर्ज करने और डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग करने की व्यवस्था की गई है ताकि पीड़ित को बार बार थाने या अदालत के चक्कर ना लगाने पड़े।
0: छोटे अपराधों में केवल जेल भेजने के बजाय सामुदायिक सेवा जैसे सजा का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि सुधार और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देना है। डिजिटल साक्ष्य को कानूनी मान्यता। आज यदि साइबर ठगी, ऑनलाइन धमकी या सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध होता है तो मोबाइल, ईमेल, CCTV फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं। ये डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कार्यक्रम में जिसका उद्देश्य 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करना था, वहां अपने संबोधन में एक उदाहरण दिया था।
1: बिहार के छपरा में हत्या के एक मामले में FIR से लेकर निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया 14 दिनों में पूरी हुई और दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रधानमंत्री ने इसे नए न्याय व्यवस्था के प्रभाव का उदाहरण बताया। जब न्याय का नया भारत बनाने के लिए सरकार इतने कदम उठा रही है तो केवल न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाना ही हमारा काम नहीं बल्कि कुछ अन्य फर्ज भी बनता है, जैसे कि कानून जानना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, गलत सूचना से बचें,
0: साइबर अपराध की शिकायत करें, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के बारे में जानें। न्याय केवल अदालत का विषय नहीं अपितु समाज की जिम्मेदारी भी है। बदलते समय के साथ न्याय व्यवस्था भी नए आयामों की ओर अग्रसर है, लेकिन किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति केवल कानून नहीं बल्कि उस पर नागरिकों का विश्वास होता है। आइए अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें, क्योंकि न्याय तभी सार्थक है जब वो सबके लिए सुलभ हो, समय पर मिले और विश्वास जगाए।
1: और हमारी भागीदारी इस विश्वास को पुख्ता करती है, क्योंकि अब अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को किसी मसीहा के निकलने की आवश्यकता नहीं बल्कि दिन के उजाले में सजग हो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानने की आवश्यकता है। तभी तो हम गलत आय का नहीं बल्कि न्याय का नया भारत बना पाएंगे। नव निर्माण की चाहत, फर्ज की आदत, न्याय की राहत, यही तो है मेरा नया भारत।
0: जहाँ कानून बना अब जन का जुनून, मिला हर नागरिक को सुकून,
1: संविधान का बढ़ा सम्मान, यही है नए भारत की पहचान।
0: सजग नागरिक, सशक्त कानून, यही है न्याय का नया जुनून। जय हिंद।
2: अब तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम सजग भारत।
3: ये कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद केंद्र के अंतर्गत प्रसारित किया गया।
4: రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ SIR 2026 లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి ఫార్మ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫార్మ్, అభ్యంతరాలకు ఫార్మ్ 7, సవరణలకు ఫార్మ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా BLO కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: 11:19, a very very good morning dear listeners. आप जुड़े हुए हैं FM Rainbow के साथ और एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं कुछ खूबसूरत नगमों के साथ, क्योंकि अब बीट आर यही है हमारा सेगमेंट जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, और इसमें आप सुन पाएंगे कुछ खूबसूरत गीत. एंड यस, आप जहाँ कहीं भी हो, स्वस्थ हो, खुश हो, मुस्कुराते रहें, यही मेरी दुआ रहेगी. मैं हूँ निशा आपके साथ. एंड सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. तो जहाँ कहीं भी हो, कूल रहने की कोशिश कीजिए, चाहे ट्रैफिक में फंसे हों, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, है ना. ठंड का मौसम आ चुका है बट गर्मी ख़त्म ही नहीं हो रही, तो काफ़ी गर्मी भी लग रही है, उससे भी थोड़ी बहुत इरिटेशन होती है, यू ना. और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं होता है. काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो इरिटेट कर जाते. वेल, जो भी चल रहा हो लाइफ में, लाइफ को स्मूथली अगर आगे बढ़ाना है तो मुस्कुराते रहना पड़ेगा और बीती बातों को भूलते जाना पड़ेगा. जो हो रहा है उसे भूलते जाइए और आगे की सोचते जाइए, और ऐसे ही लाइफ यू नो चलती रहेगी, कटती रहेगी. और अगर आप सिर्फ इस लाइफ को काटना ही नहीं चाहते, इस लाइफ को जीना चाहते वो भी खूबसूरती के साथ, तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM Rainbow 101.9. वेल, इट्स अप बीट आर, और यहाँ पर मैं प्ले करने वाली हूँ कुछ खूबसूरत खूबसूरत गाने आपके लिए. एंड यस, यहाँ पर हमारे कुछ लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं. यहाँ पर हैं हमारे साथ सरवर अली जी, जो कहते हैं गुड मॉर्निंग निशा मैडम. तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. एंड एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट है फ्रॉम द फिल्म निकाह. वेल, आप सभी को पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है ना, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो सेगमेंट है 12:10 से यादों की बारात, वहाँ पर आपकी सारी प्ले लिस्ट की फरमाइश पूरी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मैं प्ले करने वाली हूँ कुछ खूबसूरत पुराने गाने. एंड यस, यहाँ पर एक और लिसनर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हैं गौतम फ्रॉम हिमायत नगर. लिखते हैं, हेलो निशा जी, नाइस टू हियर योर लवली वॉइस अगेन. एंड डू यू नो देयर इज एन 80s हिंदी फिल्म सॉन्ग विच स्टार्ट्स विद योर नेम. यस, आई डू नो. एंड काफ़ी अच्छा गाना है. वेल, आप दोनों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड फिलहाल के लिए एक गाना सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की आवाज़ में फ्रॉम द फिल्म फनी खान. सुनते रहिए ये FM Rainbow 101.9. इट्स 21:11 बाई द स्टूडियो क्लॉक.

Well, that was Halka Halka Surur here from the film Funny Khan. Dear listeners, you are tuned in to Akashvani Hyderabad FM Rainbow 101.9 and it's 25 minutes past 11 by the studio clock. और जी हाँ, ये है हमारा अपबीट आर जिसमें आप सुन पाएंगे कुछ गाने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समय थोड़ा सा कम है. और आपको बता दें कि 11:30 पर एक और खास सेगमेंट के साथ हम जुड़ेंगे जिसे कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत. और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे हमारे देश के एक राज्य की. जी हाँ, हर हफ्ते जो है हम एक राज्य से जुड़ेंगे, अपने देश के बारे में और जानेंगे, उसे और करीब से जानेंगे. और आज जिस राज्य से हम जुड़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान. वेल, फिलहाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको अपने फेवरेट टीचर याद हैं? वेल, वो एक टीचर जिनका नाम आज भी आपको याद है, जिनकी कई कुछ बातें आज भी आपके साथ है, और शायद जिन्होंने कभी आप पर तब बिलीव किया था जब आपको खुद पर यकीन भी नहीं था. वेल, टुडे इज द परफेक्ट डे टू थिंक अबाउट देम बिकॉज इट्स वर्ल्ड टीचर्स डे. दोस्तों, टीचर्स सिर्फ क्लासरूम में खड़े होकर हमें बुक्स के लेसन्स नहीं सिखाते, वो हमें लाइफ के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स देते हैं. वो हमें इंकरेज करते हैं, हमारी गलतियों को ऑब्जर्व करते हो और हमें हमारी गलतियों से सीखने का मौका देते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद पर भरोसा करना सिखाते हैं. एंड यू नो व्हाट्स ब्यूटीफुल, दैट इयर्स मे पास, क्लासरूम्स मे चेंज, बट द टीचर्स वर्ड्स कैन स्टे विद अस फॉर एवर. और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो रियलाइज़ होता है कि कुछ सबक ऐसे भी थे जो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखे हुए थे. कभी शायद एक छोटी सी अप्रिसिएशन, कभी एक इनकरेजिंग वर्ड, और कभी सिर्फ इतना कह देना दैट आई नो यू कैन डू इट, और शायद वही छोटी सी बात हमारे लिए बहुत बड़ी थी. सो टुडे लेट्स सेलिब्रेट एवरी टीचर हु हैज़ मेड अ डिफरेंस इन अर लाइव्स. और अगर आज आपके माइंड में भी कोई फेवरेट टीचर आ रहे हैं, तो क्यों ना उनको एक मैसेज किया जाए. बस इतना कह दीजिए दैट थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी, बिकॉज यू नो समटाइम्स दीज सिंपल वर्ड्स कैन मीन द वर्ल्ड टू अ टीचर. सो टू ऑल द वंडरफुल टीचर्स हु कंटिन्यू टू इंस्पायर, गाइड एंड शेप अ फ्यूचर, अ वेरी वेरी हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे. एंड विद दैट विल मूव अहेड विद अनदर लवली सॉन्ग. दिस इज ब्लू विद वन लव. स्टे ट्यून्ड, दिस इज एफएम रेनबो 101.9.

0: FM Rainbow 101.9।
1: दोस्तों आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ, मैं हूं निशा आपके साथ। और दोस्तों फिलहाल तो मैं यही सोच रही हूं कि क्यों ना आपको थोड़ी देर के लिए रेडियो के जरिए ही एक छोटी सी सैर करवा दी जाए। जी हां, कहीं जाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रेडियो से ही जुड़े रहिए। और यहां पर जाने के लिए टिकट भी नहीं चाहिए, बस आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक ऐसी जगह है जहां बड़े बड़े किले हैं, खूबसूरत महल है, दूर तक फैली हुई रेत है, रंग बिरंगे बाजार हैं और कुछ शांत सी झीलें। आई थिंक अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ, है कि नहीं दोस्तों? वेल, मैं बात कर रही हूँ भारत के उस राज्य की जो क्षेत्रफल के मामले में हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों ये है हमारा रंगीलो राजस्थान, जो जाना जाता है अपने खूबसूरत महलों, बड़े बड़े किले, रंग बिरंगे बाजार और दूर तक फैले रेगिस्तान के लिए। वैसे इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। और दोस्तों जब राजस्थान की बात हो रही हो ना, तो ऑब्वियसली सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है कि कौन से ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर हम जाएं और कौन सा ऐसा सीज़न है जब हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो सीज़न की बात करें तो नवंबर दिसंबर बेस्ट सीज़न रहेंगे आपके लिए, आप जा सकते हैं वहाँ पर, घूम सकते हैं, वेदर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली दिन में जो वेदर है वो वहाँ पर धूप रहेगी ठीक ठाक, लेकिन रात में थोड़ी बहुत ठंड हो सकती है, तो आप उस हिसाब से कपड़े पैक कर सकते हैं। एंड यस, यहाँ पर डेस्टिनेशंस की बात हो रही थी, तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए सबसे पहले चलते हैं जयपुर की तरफ। जयपुर दोस्तों यानी पिंक सिटी ऑफ राजस्थान। और दोस्तों जयपुर का नाम लेते ही ना सबसे पहले अगर किसी जगह की तस्वीर हमारे दिमाग में आती है तो वो है हवा महल। जी हाँ, जयपुर आए और हवा महल ना देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाल और गुलाबी सैंडस्टोन पत्थरों से बना ये खूबसूरत महल अपनी लगभग 953 यानी 953 छोटी छोटी खिड़कियों और जालीदार झरोखों के लिए जाना जाता, और इन्हीं झरोखों से होकर हवा अंदर आती थी, इसी वजह से इसका नाम पड़ा हवा महल यानी पैलेस ऑफ विंड्स, जिसे देखते ही आपको महसूस होता है कि हाँ, हम सचमुच में पिंक सिटी में हैं। और अगर आप हवा महल को रात में देखें ना, तो ये और भी सुंदर लगता है, क्योंकि जब महल पर रोशनी पड़ती है, लाइट्स पड़ती है, तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। उसका जो कलर है, वो जो पिंक कलर है, रोज़ पिंक कलर, वो और सुनहरा हो जाता है। तो दोस्तों बात करेंगे राजस्थान के कुछ और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की, क्योंकि यहाँ पर हम हर हफ्ते आपके साथ एक नए राज्य के साथ आएंगे,

और उसके टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, उन वहाँ की पाक परंपराएं, वहाँ की कला, सभ्यता, संस्कृति, हर चीज़ की बात करेंगे हर एक दिन एक नए टॉपिक के साथ। एंड यस, आज हम बात करें राजस्थान के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की, तो और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से उनकी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा सॉन्ग।

0: book to your friends just because you simply felt that this is a must read. What if we told you that you could now share that experience not just with one person but with thousands of listeners? If the thought of your voice bringing a story to life excites you, then this one is for you. FM Rainbow is thrilled to present Read with Rainbow, a brand new initiative that celebrates the joy of reading through the voices of young readers. If you're between 15 to 25 years of age and have a passion to share a good read with listeners across the airwaves, then share us your name and mobile number to our mailing address readwithrainbow2026@gmail.com. So dear listeners, what are you waiting for? Don't just read a great book, be the voice that shares it. Read with Rainbow, where every page finds a voice and every voice inspires a reader.
1: రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఏఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా డిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
2: FM Rainbow 101.9.
3: वेलकम बैक दोस्तों, आप जुड़े हुए आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 के साथ सुबह के 11:40 आप सुन रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत. और यहाँ पर आज हम कर रहे हैं एक वर्चुअल यात्रा, और ये यात्रा है हमारे देश के खूबसूरत राज्य राजस्थान की. जी हाँ, राजस्थान के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात कर रहे थे हम, और यहाँ पर हमने बात की हवा महल की, जो स्थित है जयपुर के पिंक सिटी यानी कि जयपुर में. और यहाँ पर दोस्तों अगला पड़ाव जो है हमारा वो है राजस्थान की हमारी एक खूबसूरत जर्नी का अहम हिस्सा, और ये अहम हिस्सा है चित्तौड़गढ़. जी हाँ, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बसा ये शहर अपने ऐतिहासिक किले के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. तो जी हाँ, अगर हम एक ऐसी जगह की बात करें जहाँ कदम कदम पर हिस्ट्री दिखाई देती है, हिस्ट्री को फील किया जाता है, तो अलग यू नो अगला जो पड़ाव है हमारा वो है चित्तौड़गढ़ का किला. दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला सिर्फ एक फोर्ट नहीं है, ये अपने अंदर सदियों की कहानियां समेटे हुए है. एक ऊंची पहाड़ी पर फैला हुआ ये विशाल किला करीब 700 एकर्स में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है. और जैसे ही आप इसके अंदर जाते हैं ना, आपको लगता है जैसे आप इतिहास की किसी पन्ने में चले गए हों. यहां आपको मिलेंगे पुराने महल, मंदिर, स्मारक और कई ऐसी जगहें जिनसे राजस्थान के इतिहास की अलग अलग कहानियां जुड़ी हुई है. ऑलराइट, ये तो बारे में था चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में हमने जाना. एंड ये जो हमारी जर्नी है जहां पर हम राजस्थान के अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को जान रहे हैं, इस जर्नी में हमारा अगला पड़ाव है आमेर फोर्ट. दोस्तों जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बना हुआ आमेर फोर्ट दूर से ही अपनी भव्यता से आपका ध्यान खींच लेता है. और जब आप किले की तरफ बढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे सामने राजस्थान का वो रॉयल एरा फिर से जिंदा हो गया हो, जहां पर राजा महाराजा अपने महल के साथ और खूबसूरत राजस्थान. दोस्तों आमेर फोर्ट की खूबसूरती की सबसे खास बात है इसका आर्किटेक्चर, राजपूत और मुगल शैली का खूबसूरत मेल. बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची दीवारें, खूबसूरत महल और अंदर की शानदार नक्काशी, हर जगह आपको कुछ नया देखने को मिलता है. और यहाँ शीश महल को देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. हजारों छोटे छोटे मिरर पीसेस से सजा हुआ ये महल अपने आप में बहुत खास है. कहा जाता है कि यहाँ एक छोटी सी रोशनी भी पूरे कमरे को जगमगा देती थी. और दोस्तों आमेर फोर्ट से आसपास की अरावली पहाड़ियों और

माउटा लेक का व्यू भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। तो अगर आप जयपुर जा रहे हैं और राजस्थान की रॉयल हिस्ट्री को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो आमेर फोर्ट आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, वो आपको अपने दौर की कहानी सुनाती है, और आमेर फोर्ट ऐसी ही एक जगह है। वेल, और भी कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं राजस्थान की, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक सॉन्ग की तरफ। तो सुनते रहिए, यह FM रेनबो 101.9।

0: ఇరానీ చాయ్,
1: బన్ మస్కా,
0: హైదరాబాదీ బిర్యానీ,
1: టంగ్ ది కబాబ్,
0: కుర్బానీ కా మీఠా,
1: షహదూద్ మలాయ్.
0: హైదరాబాద్ ఇస్ ఎ గ్రాండ్ బఫే
1: అండ్ ఎవ్రీ డిష్ హ్యాస్ ఎ స్టోరీ వెయిటింగ్ టు బి టోల్డ్.
0: ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వై జష్నే హైదరాబాద్ ఇస్ యువర్ ఆఫ్టర్నూన్ ట్రీట్
1: ఫ్రమ్ 2 to 3 PM ఎవ్రీ డే ఆన్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
0: ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫుడ్,
1: ఇట్స్ కల్చర్, హిస్టరీ అండ్ ఫ్లేవర్ రోల్డ్ ఇన్ టు వన్.
0: జష్నే హైదరాబాద్.
2: ग्यारह बजकर 50 मिनट दोस्तों, आप जुड़े हुए आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 के साथ, और हम जुड़े हुए हैं कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं अपने देश के कुछ राज्यों के साथ और करीब से जुड़ने के लिए. और इस हफ्ते हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं वो है राजस्थान. और जैसा कि आपने एक खूबसूरत सा गाना सुना, केसरिया बालम, एंड कहीं ना कहीं लगता है ना कि अगर आपको राजस्थान को फील करना है तो उसके उस राज्य के फोक सॉन्ग्स को ज़रूर सुनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जो कला है, वहाँ की संस्कृति, वो अपने आप जब हम वहाँ के फोक सॉन्ग सुनते हैं तो उसकी एक प्यारी सी झलक हमारे जहन में आ जाती है. और इसीलिए ये गाना मैंने खास करके आपको सुनवाया, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की बात चल रही है. और दोस्तों, राजस्थान के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की यहाँ पर बात कर रहे थे हम, और हमारी इस जर्नी का अगला पड़ाव है जैसलमेर फोर्ट. दोस्तों, जैसलमेर का ये किला दूर से ही अपनी सुनहरी चमक से आपका ध्यान खींच लेता है, और इसी वजह से इसे सोनार किला भी कहा जाता है. राजस्थान की गोल्डन सिटी यानी जैसलमेर का एक मुख्य आकर्षण गोल्डन सैंडस्टोन से बना ये किला सिर्फ बाहर से खूबसूरत नहीं है, इसके अंदर जाएंगे तो आपको छोटी छोटी गलियां, पुराने घर, दुकानें और मंदिर भी देखने को मिलेंगे. यानी ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं, आज भी यहां लोग रहते हैं, एज इट्स वन ऑफ द वेरी फ्यू लिविंग फोर्ट्स इन द वर्ल्ड, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस भी मिला हुआ है. और दोस्तों, जब सूरज की रोशनी इस किले की दीवारों पर पड़ती है ना, तो पूरा किला जैसे सोने की तरह चमकने लगता है. तो अगर आप जैसलमेर जा रहे हैं तो इस फोर्ट को अपनी लिस्ट में जरूर रखिएगा, क्योंकि यहां आपको राजस्थान की हिस्ट्री भी मिलेगी और उसका गोल्डन चार्म भी. और अगर आप जैसलमेर जाएं तो सिर्फ जैसलमेर फोर्ट देखकर वापस मत आइएगा, वहां का डेजर्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए कैमल सफारी जरूर कीजिएगा, गोल्डन सैंड ड्यून्स के बीच ऊंट की सवारी, और फिर शाम होते ही वही नाइट कैंपिंग, जहां राजस्थानी ट्रेडिशनल डांस, फोक सॉन्ग और लोकल फूड के साथ पूरी शाम एकदम रंगीन हो जाती है. वेल दोस्तों, आज हमने की राजस्थान की एक खूबसूरत सैर, वहाँ के कुछ खास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जाना और राजस्थान को थोड़ा और करीब से महसूस किया. वैसे तो बहुत सारी जगह हैं, राजस्थान है ही इतना रंगीला. जयपुर पिंक सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, जैसलमेर गोल्डन सिटी, है ना, अलग अलग नाम, उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स, ये सारी ही जगहें आप जा सकते हैं. इवन बीकानेर, पुष्कर, अजमेर, बहुत सारी जगह हैं, बट जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर, पुष्कर, ये कुछ फेमस जगह हैं. और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं. अब मैं किन किन की

बात करूँ, इतने सारे फोर्ट्स हैं, इतने सारे लेक्स हैं, एंड यस बहुत सारा फोक सॉन्ग्स, डांस फॉर्म्स है, लाइक कालबेलिया है जिसे यूनेस्को से पहचान मिली हुई है, स्टेटस मिला हुआ है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं राजस्थान में एक्सपीरियंस करने के लिए. तो हम फिर से एक बार दोस्तों राजस्थान के बारे में जानकारी लेकर लौटेंगे कल. जी हाँ, कल एक बार फिर इसी समय हम लौटेंगे, यानी 11:30 पर, राजस्थान के पाक परंपराओं और लजीज स्वादों को आप तक पहुँचाने के लिए. क्योंकि इस पूरे हफ्ते यानी मंडे टू सैटरडे तक हम कर रहे हैं राजस्थान की एक खास सैर, अलग अलग रंगों, परंपराओं, संस्कृति और स्वादों के साथ इन एक भारत श्रेष्ठ भारत. और आपको बता दें कि आपको छोड़े जाती हूँ एक सॉन्ग के साथ, क्योंकि 12 बजे हम जुड़ने वाले हैं न्यूज़ हेडलाइन से, जो आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से. 12 बजे हिंदी में समाचार, एंड एट 12:05 यू विल बी लिसनिंग टू न्यूज़ इन इंग्लिश. लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम राजस्थान की तरफ आज चले गए थे, राजस्थान की एक वर्चुअल सैर करने चले गए थे, तो एक और सॉन्ग जो आपको ज़रूर थोड़ा और पास ले जाएगा राजस्थान के कल्चर की तरफ. एंड यस, इसी सॉन्ग के साथ सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलां के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पामलां ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पामलां के बीच बैठक में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा होगी और दोनों देशों की साझेदारी बढ़ेगी। राष्ट्रपति पामलां को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
1: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: राष्ट्रपति पामलां ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। तीन दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे राष्ट्रपति पामलां के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक जैसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
3: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
2: There are rooms to operate from. Both sides would do it.
0: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने

0: इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में बंगाव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 175 अंक बढ़कर 72,085 पर और निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ 22,472 पर था। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। अगले दो दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding bilateral discussions with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. During the talks, they will review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas, including trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The leaders will also exchange views on regional and global developments, including cooperation in multilateral fora. President Parmelin arrived in New Delhi this morning on a three-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. The visiting dignitary was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi welcomed the Swiss president. He was given a tri-services guard of honour. Talking to reporters after the ceremonial welcome, Mr. Parmelin said the visit is an excellent opportunity to emphasize the importance that both Switzerland and India attach to this relationship.
2: The visit is an excellent opportunity to emphasize the importance that both Switzerland and India attach to this relationship. The relationship between our two countries is built on shared democratic values as well as on trust and mutual respect. My visit is a stepping stone towards a further growth, deepening and strengthening of our close, broad and long-standing partnership.
1: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the US-India trade deal negotiations are still ongoing and are yet to be finalized. Speaking at the Munich leaders' meeting in New Delhi today, Ms. Sitharaman said both sides have reached a plateau. She described the agreement under discussion as a hard and rigorously negotiated one. The minister said the trade balance is very much in India's favour. She said that negotiations used to be the only platform through which countries could highlight their discrepancies.
3: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement. The agreement's negotiations are still ongoing, although we'd like to believe that both the sides have reached a plateau beyond which giving or taking might be very, very difficult. But maybe if there are rooms to operate from, both sides would do it.
1: The finance minister has hailed India-European Union free trade deal, saying it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Speaking at the Munich leaders' meeting in New Delhi today, Ms. Sitharaman said the deal, aptly described as the mother of all deals, covers economies representing around 2 billion people and about one-fourth of global GDP. The finance minister said the agreement provides for complementary market access while ensuring that competitiveness remains unaffected.

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: ఎల్ఐసి వారి బీమా ప్లాటినం లిమిటెడ్ ప్రీమియం ఆప్షన్ తో 7, 10, 12, 15 ఇంకా 18 సంవత్సరాల పాటు ప్రీమియం చెల్లించే సదుపాయం. మీ భవిష్యత్తుకు తగిన ప్రతిఫలం అందిస్తూ బీమా రక్షణ గ్యారంటీడ్ అడిషన్ తో ఇంకా మరెన్నో ప్రయోజనాలు. ఎల్ఐసి బీమా ప్లాటినం తో ఎల్ఐసి ప్రతి క్షణం మీకు తోడుగా.
2: FM Rainbow 101.9. दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है. उनकी धुन सुनते ही कोई मानो ऐसी पुरानी याद हमारे जहन में दस्तक दी जाती है, जिनके होने से ही ज़िंदगी खूबसूरत लगती है. वेल, वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं अभी यादों की बारात. जी हाँ, ये है एक ऐसी म्यूज़िकल जर्नी जहां हम लौटते हैं हिंदी सिनेमा के उस दौर में जिसे हम प्यार से कहते हैं बॉलीवुड का गोल्डन एरा. वो दौर जब कहानियां दिल से कही जाती थी, गीतों में शायरी होती थी, संगीत में सुकून होता था और आवाज़ों में एक ऐसी मिठास जो आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है. तो आइए आज की इस यादों की बारात में थोड़ा सा वक्त आज से चुराते हैं और लौट चलते हैं कुछ सुनहरी यादों की तरफ. सुनते रहिए, ये है FM रेनबो 101.9 और अभी जारी हो गया है यादों की बारात का सफ़र. मैं हूं निशा आपके साथ इस सफ़र में, आपकी हम सफ़र.

दोस्तों, अभी जिस आवाज़ को आपने सुना ना, ये तो आप तक आप समझ ही चुके होंगे कि ये आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की। दोस्तों, एक दौर था जब रफ़ी साहब की आवाज़ लोगों के दिलों पर कुछ इस तरह राज करती थी कि उनका नाम सुनते ही चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती थी। उनकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी जो प्यार जैसे खूबसूरत एहसास को भी बयां करती थी और बिछड़ने के गम को भी महसूस करवाया हमें। ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी उनके गीतों ने हम तक पहुंचाया, और शायद यही वजह है कि आज इतने सालों बाद भी उनके गीत हमारे साथ हैं। क्योंकि कुछ आवाज़ें सिर्फ एक दौर की नहीं होती, वो हर दौर की आवाज़ बन जाती है। तो आइए आज इस यादों की बारात में मोहम्मद रफ़ी साहब की इसी खूबसूरत आवाज़ के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उन्हीं के कुछ और एवरग्रीन सॉन्ग्स, जिनको सुनकर थिरकने का और कभी कभी गुनगुनाने का भी मन करता है। और अभी जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ, उसे सुनकर तो बस गुनगुनाने का या मन करेगा और किसी पुरानी याद में आप खो जाएंगे या फिर किसी स्पेशल वन को ज़रूर याद करेंगे आप। तो सुनते रहिए, ये FM रेनबो 101.9, और फिलहाल आप जुड़े हुए हैं यादों की बारात के साथ। तो चलिए इस यादों की बारात को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा सॉन्ग।

0: ఏది మామా తిన్నాను పోదామంటే ఏ బిర్యానీయో మండియో అనుకుంటే ఈ అజీ ప్లేస్ కు పట్టుకొచ్చినావు.
1: వింటేజ్ బార్స్ అన్ని ఇట్లనే ఉంటాయి మచ్చా, ఎప్పుడు తిన్నదే ఏం తింటావు? ఇక్కడ టమాటర్ కాట్ మస్తు ఉంటది.
0: అదేంది మామా నేను ఎప్పుడు వినలేదు.
1: ఇదిగో ఆర్డర్ వచ్చేసింది, ముందు తిని చెప్పు ఎట్లుందో.
0: కిరాకుంది మామా, ఈ ప్లేస్లు ఈ డిష్లు ఎట్లా తెలుస్తాయి మామా నీకు అన్ని?
1: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.
2: दोस्तों ये आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9, दोपहर के 12:25, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून डियर लिसनर्स. आप जुड़े हुए हैं यादों की बारात के साथ. जी हाँ, ये एक ऐसे यादों की बारात है ना जहाँ पर ढेर सारी यादें हैं, और ये यादें जुड़ी हुई हैं कुछ खूबसूरत गानों के साथ. दोस्तों आज यादों की बारात में हम याद कर रहे हैं कि ऐसी आवाज़ को जिसने हिंदी सिनेमा के संगीत को न जाने कितने रंग दिए, कभी प्यार का रंग तो कभी बिछड़ने का, और कभी किसी के साथ होकर भी उसके साथ ना होने का. 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में जन्म हुआ था मोहम्मद रफ़ी साहब का. कहते हैं बचपन में उनके गांव से एक फकीर गुजरा करता था, उसकी आवाज से रफी साहब इतने प्रभावित हुए कि वे उसकी नकल करते हुए गाने लगे, और शायद वहीं से इस सुरीले सफर की शुरुआत हुई. और एक बेहद दिलचस्प किस्सा ये भी है उनके शुरुआती दिनों का कि रफी साहब करीब 13-15 साल के थे जब लाहौर में केएल सहगल के एक कार्यक्रम में अचानक बिजली और माइक्रोफोन की समस्या आ गई. आयोजकों ने युवा रफ़ी को मंच पर गाने के लिए कहा, और उन्होंने बिना माइक के अपनी आवाज़ से पूरे माहौल को भर दिया. कहा जाता है कि सहगल साहब ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, और आगे चलकर रफ़ी साहब को फिल्म गुल बालोच में गाने का मौका मिला. फिर आया 1944 का दौर. दोस्तों 1944 में रफ़ी साहब बॉम्बे आए, एक छोटे से कमरे से शुरुआत की, और धीरे धीरे उनकी आवाज़ हिंदी सिनेमा की सबसे पहचाने जाने वाली योग्य आवाज़ों में शामिल हो गई. लेकिन रफ़ी साहब की दोस्तों सबसे बड़ी खूबी शायद सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं थी, उनकी वर्सटैलिटी थी. रोमांस हो, दर्द हो, भजन हो, कवाली हो, देशभक्ति हो, या फिर कोई मस्ती भरा गाना, रफ़ी साहब हर इमोशन को अपनी आवाज़ में ऐसे ढाल देते थे जैसे वो गीत उन्हीं के लिए लिखा गया हो. और शायद इसीलिए रफ़ी साहब सिर्फ गाते नहीं थे, वो किरदार की आवाज़ बन जाते हैं. और ऐसे ही किरदारों की आवाज़ यहाँ पर आपको सुनने मिलने वाली हैं बहुत सारे गानों के साथ जो रफ़ी साहब की आवाज़ में हैं. और अभी फ़िलहाल के लिए जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने जाने वाली हूँ वो आई थिंक बहुत सारे आशिकों का फेवरेट सॉन्ग है, ऐसा कह सकते हैं. ये गाना बहुत सारे जो आशिक हैं, वन साइडेड लवर्स हैं, उनके दिल को टटोलता है. कहीं कहीं पे लिरिक्स ऐसे हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द भी देते हैं, लेकिन कोई कोई जगह पर कहीं कहीं पे लिरिक्स ऐसे भी हैं जो थोड़ा बहुत सुकून भी दे जाते हैं. और यही खासियत है मजरू सुल्तानपुरी जी के लिरिक्स की. जी हाँ, ये गाना है हम किसी से कम नहीं फिल्म से, म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन साहब, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी जी ने. तो सुनते रहिए ये एफ एम रेनबो 101.9.

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की बारात, ओनली ऑन एफएम रेनबो 101.9 आकाशवाणी हैदराबाद। और मैं हूं निशा, आपके साथ आज आपके हम सफर इस खूबसूरत से म्यूजिकल जर्नी में। और जी हाँ, ये जो गाने हैं, ये जो खूबसूरत आवाज़ है, वो तो आप पहचानते ही होंगे, मोहम्मद रफ़ी साहब की है। और दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी

साहब की आवाज़ की बात करते हुए अगर हम उनके सिंगिंग करियर के सफ़र पर नज़र डालें तो ये सफ़र अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। रफ़ी साहब का प्रोफेशनल सिंगिंग करियर लगभग 36 यानी 36 ईयर्स का था, यानी 1944 से लेकर 1980 तक, और इन करीब 3.5 दशकों में उन्होंने हिंदी के साथ साथ कई दूसरी भारतीय भाषाओं में भी गाया। उनके गीतों की संख्या की बात करें तो अलग अलग रिसर्चेस और काउंटिंग मेथड्स के हिसाब से उनके रिकॉर्डेड सॉन्ग्स की संख्या 7,000 से भी ज़्यादा बताई जाती है। जी हाँ, यानी 3-4 दशक का सफ़र और हज़ारों गीत, और इन गीतों में कितने रंग थे, रोमांस, सैडनेस, कॉमेडी, कवाली, भजन, पैट्रियाटिक सॉन्ग्स और क्लासिकल कॉम्पोजिशंस भी। दोस्तों, रफ़ी साहब की आवाज़ हर मूड में ढल जाती थी, लेकिन उनकी म्यूज़िकल पार्टनरशिप भी कम दिलचस्प नहीं है। अगर फीमेल सिंगर्स की बात करें तो आशा भोसले जी और लता मंगेशकर जी के साथ उनके सबसे ज़्यादा यादगार डुएट्स रहे। सोचिए, अच्छा जी मैं हारी, चलो उड़े जब जब जुल्फे तेरी, अभी ना जाओ छोड़कर, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। हर गीत एक अलग कहानी, एक अलग केमिस्ट्री के साथ, और सिर्फ फीमेल सिंगर्स ही नहीं दोस्तों, रफ़ी साहब ने मन्ना डे जैसे महान सिंगर्स के साथ भी कई डुएट्स किए, जबकि सुमन कल्याणपुर के साथ उनके 140 से ज़्यादा डुएट्स का उल्लेख मिलता है। आपको बता दें कि रफ़ी साहब ने अपने सिंगिंग करियर में कुल 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते। पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिला 1960 में चौधवी का चांद हो गाने के लिए, फिर तेरी प्यारी प्यारी सूरत खो के लिए, फिर चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर बहारो फूल बरसाओ और दिल के झरोखों में, और बाद में क्या हुआ तेरा वादा के लिए जो आपने सुना। इन सभी गानों के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, एंड 1967 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। 1977 में आया एक और बेहद खास सम्मान उनके लिए, जब नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर भी उन्हें मिला फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत क्या हुआ तेरा वादा के लिए। लेकिन दोस्तों, अवार्ड्स और नंबर्स अपनी जगह है, रफ़ी साहब की सबसे बड़ी अचीवमेंट शायद ये थी कि उन्होंने हज़ारों गीतों को लोगों की यादों का हिस्सा बना दिया, और उनकी आवाज़ में ना एक ऐसी वर्सेटैलिटी है कि एक ही सिंगर कभी शमी कपूर की मस्ती बन गया तो कभी दिलीप कुमार जी का दर्द, कभी देवानंद साहब का रोमांस, और कभी किसी आम इंसान के दिल की आवाज़। और शायद इसीलिए रफ़ी साहब को सिर्फ एक सिंगर कहना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। वो एक आवाज़ नहीं थे बस, वो अपने आप में एक पूरा म्यूजिकल एरा थे। तो आइए, अवार्ड्स और नंबर्स से आगे बढ़कर अब उस आवाज़ को महसूस करते हैं जिसने करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई। सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के कुछ और सदाबहार नगमे और जारी रखते हैं हमारे यादों की बारात। सुनते रहिए, ये है FM रेनबो 101.9।

जी हाँ, ये खूबसूरत आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की। दोस्तों, आप सुन रहे हैं यादों की बारात, ओनली ऑन एफएम रेनबो 101.9 आकाशवाणी हैदराबाद, और मैं हूँ निशा आपके साथ। आज आपकी हम सफ़र इस खूबसूरत सी म्यूज़िकल जर्नी में, वेल इट्स 55 मिनट्स पास 12 बाई द स्टूडियो क्लॉक, और वक्त को देखते हुए बस इतना ही कह सकती हूँ कि शायद ये यादों की बारात आज के लिए यहीं तक थी। थोड़ा सा समय हमारे पास इस सेगमेंट में बाकी है और उसका भी अच्छा सा इस्तेमाल करेंगे। एक बहुत खूबसूरत सा गाना है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, उसे भी आप तक पहुँचाएंगे हम। ये गाना है हम दोनों फिल्म से, जो कि आई थी 1961 में, और जैसा कि मैंने बताया कि रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा डुएट सॉन्ग्स किए आशा भोसले जी और लता मंगेशकर जी के साथ। तो ये गाना है मोहम्मद रफ़ी जी और आशा भोसले जी की आवाज़ में, म्यूज़िक है जयदेव का और गीत के बोल साहिर लुधियानवी के। एंड आई थिंक इस गाने को सुनकर ना हमें बस यही लगेगा कि बस काश ये जो सिलसिला है ना, ये चलते ही रहता, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने हम और कुछ देर तक सुन पाते। लेकिन ये जो सेगमेंट था बस यहीं तक है, इसीलिए ये जो आखिरी गाना है, आप इन्जॉय कीजिए इस सेगमेंट का। एक बार फिर से लौटेंगे हम अगले सेगमेंट के साथ, ओनली ऑन एफएम रेनबो 101.9, जहां एक बार फिर से हम जुड़ेंगे कुछ खूबसूरत गानों के साथ और कुछ स्टोरीज़ के साथ। जी हाँ, कुछ लोगों की कहानियाँ जो काफ़ी इंस्पायरिंग हैं एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन कहानियों से। तो सुनते रहिए ये एफएम रेनबो 101.9।

वेलकम बैक दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 के साथ और मैं हूं निशा आपके साथ। आज आपके हम सफर इस खूबसूरत सी म्यूजिकल जर्नी में जो कि चलते ही आ रही है, सुबह से लेकर अभी तक दोपहर हो गई है। बहुत सारे गाने सुने हमने, बहुत सारी बातें भी की और एक खूबसूरत सा कार्यक्रम, हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सजग भारत भी आपने सुना, इस दौरान न्यूज़ सुना है ना, तो ढेर सारा एंटरटेनमेंट आपके रूबरू FM रेनबो 101.9 के साथ। और आपको यही बताना चाहूंगी कि आप जहां कहीं भी हो, किसी भी काम को करते करते, कहीं भी जाते हुए, कहीं से भी आते हुए हमारे प्रोग्राम को ट्यून इन कर सकते हैं थ्रू आर न्यूज ऑन एयर ऐप। जी हाँ, ये ऐप जो है आप डाउनलोड कीजिए और वहां पर हमारा चैनल FM रेनबो हैदराबाद, उससे जुड़े रहिए। वेल, सबसे पहले तो आप सभी जो जुड़े हुए हैं उनको मेरा यानी निशा का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोपहर के 1:07, सो अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून डियर लिसनर्स। एंड यस, जितना कि आज मैं आपके साथ हूँ उतना ही आप भी मेरे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी कुछ मैसेजेस हैं हमारे लिसनर्स की, तो जी हाँ, अगर आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेजना चाहते हैं, कोई संदेश है, तो नंबर इज 4023234822। और मैसेजेस की बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ सबसे पहले तो सरवर अली जी जुड़े हुए हैं, सुबह से जुड़े हुए हैं एंड लिखते हैं गुड आफ्टरनून, तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और कुछ पुराने कैसेट्स है जो मोहम्मद रफ़ी जी के कुछ कैसेट्स हैं इनके पास, उनकी तस्वीरें भेजी हैं, बहुत संभाल के रखी हुई है इन कैसेट्स को इन्होंने, तो बहुत बहुत शुक्रिया इन यादों को संभाल कर रखने के लिए। एंड यस, यहाँ पर हमारे साथ है हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी इकबाल भाई, तो लिखते हैं नमस्ते आरजे निशा मैडम, तो आपको भी नमस्ते एंड बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एंड एक गाने की फरमाइश है, जिंदगी मौत ना बन जाए। वेल, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। एंड एक छोटी सी शायरी भेजी है इन्होंने, कहते हैं कि दिल टूटना सज़ा है मोहब्बत की, दिल जोड़ना अदा है दोस्ती की,

मांगे जो कुर्बानी वो है मोहब्बत, जो बिन मांगे हो जाए कुर्बान वो है दोस्ती। वेल, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है मोहब्बत और दोस्ती में, तो यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भाई मोहब्बत ही दोस्ती है।

को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं है उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा, तो कल की फिक्र में आज की मुस्कुराहट बर्बाद ना कर। वाह क्या बात है, एंड एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट है मेरे महबूब, आज कयामत होगी। तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी, एंड आपकी जो शायरी है ये काफ़ी खूबसूरत है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एंड यस, 1:09 हो चुके हैं, और फिलहाल के लिए तो दोस्तों चलते हैं कुछ ऐसी कहानियों की तरफ, कुछ ऐसे लोगों की जिंदगियों की तरफ जिनकी कहानी हमें इंस्पायर करती है, कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती है, और सबसे ज़रूरी हमारे अंदर थोड़ी और पॉजिटिविटी और उम्मीद को भी जगाती है। ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने मुश्किलों को अपनी राह की रुकावट कभी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हीं मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया। और ऐसी ही एक शख्सियत हैं जादव पायेंग, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने, पता है, अकेले अपने दम पर असम में ब्रह्मपुत्र नदी के एक बंजर रेत के टीले को 1,360 एकड़, यानी लगभग 550 हेक्टेयर के घने जंगल में बदल दिया। और वो कैसे, वो कहानी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले एक सॉन्ग, ये सॉन्ग है फ्रॉम द फिल्म भाग मिल्खा भाग, तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, और उसको सुनने से पहले ये गाना हमें बहुत इंस्पायर करने वाला है। तो सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9।

0: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాప్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫార్మ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫార్మ్ 7, సవరణలకు ఫార్మ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా BLO కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
1: ఒక మంచి పుస్తకం మనకు కొత్త ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తుంది,
2: ఒక కొత్త ఆలోచనను అందిస్తుంది,
1: ఒక కొత్త అనుభూతిని మనలో నింపుతుంది.
2: మరి మీకు నచ్చిన పుస్తకం మీకు ఇచ్చిన ఆ అందమైన అనుభూతిని మా శ్రోతలతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నారా?
1: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో మీకు అందిస్తున్న ప్రత్యేక అవకాశం రీడ్ విత్ రెయిన్బో.
2: 15 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వారెవరైనా మీరు చదివిన పుస్తకం గురించి
1: మీ అనుభూతిని
2: మీ మాటల్లో
1: మా శ్రోతలతో పంచుకోండి.
2: మీ పేరు, మొబైల్ నంబర్ వివరాలను
1: readwithrainbow2026@gmail.com కు పంపండి.
2: మీ రీడింగ్ జర్నీ
1: మీ మాటల్లో మన శ్రోతల ముందుకు. పుస్తకంతో మీ ప్రయాణాన్ని
2: రెయిన్బోతో పంచుకోండి.
1: రీడ్ విత్ రెయిన్బో.
2: రీడ్ విత్ రెయిన్బో.
3: वेलकम बैक दोस्तों, आप जुड़े हुए आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 के साथ और मैं हूं निशा आपके साथ. वेल, यहां पर मैं बात करने वाली थी एक ऐसे इंसान के बारे में जो हमें काफी मोटिवेशन देते हैं, उनकी कहानी से हमें काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है. तो जी हाँ, अब चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ, एक ऐसे इंसान की जिंदगी की तरफ जिसने हमें सिखाया कि एक इंसान का छोटा सा संकल्प भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है. ये कहानी है दोस्तों असम के जादव पैंग की, जिन्हें आज दुनिया फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है. लेकिन दोस्तों उनकी कहानी शुरू होती है किसी बड़े जंगल से नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह से जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत थी. साल था 1979 और जादव पैंग तब सिर्फ 16 साल के थे. ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ के बाद जब पानी उतरा तो एक रेत के टीले पर उन्होंने सैकड़ों सांपों को मरा हुआ देखा. तेज गर्मी, चारों तरफ सूखी रेत और पेड़ पौधे नहीं थे वहां पर, इसीलिए इन सांपों को न छांव मिल सकी न बचने की कोई जगह. ये दृश्य उस 16 साल के लड़के के दिल में बस गया. उन्होंने सोचा अगर यहाँ पेड़ होते तो शायद ये जाने बच सकती थी. और बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने आने वाले दशकों में उस बंजर जमीन की तस्वीर ही बदल डाली. जाधव जी ने पेड़ लगाने का फैसला किया. शुरुआत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्हें बैम्बू के पौधे दिए और उन्हें उनकी देखभाल करने के लिए कहा. लेकिन जादव जी के लिए ये सिर्फ कुछ पौधे लगाने का काम नहीं था. वो रोज वहां जाते, पौधे लगाते, उनकी देखभाल करते और फिर अगले दिन वापस आ जाते. दिन महीने बीत गए, महीने सालों में बदल गए और जादव जी को ये काम जो है अच्छा लगने लगा. ये काम चलते रहा. ना कोई बड़ी टीम थी उनके पास, ना कोई बड़ा संसाधन था, बस एक इंसान और उसका संकल्प. और धीरे धीरे जहां कभी सिर्फ रेत दिखाई देती थी वहां हरियाली आने लगी, पेड़ बढ़ते गए, जंगल फैलता गया और आज वही जगह एक विशाल जंगल का रूप ले चुकी है जिसे कहते हैं मोलाई फॉरेस्ट. कहा जाता है कि इस जंगल का नाम जादव जी के निकनेम मोलाई पर पड़ा. और आज इस जंगल में सिर्फ पेड़ ही नहीं है, यहाँ हाथी, हिरन, भारतीय गेंडे, बंगाल टाइगर और कई तरह के पंछियों और दूसरे जीवों का भी बसेरा है. जरा सोचिए दोस्तों, जिस जगह पर एक समय सैकड़ों सांप गर्मी में अपनी जान गंवा बैठे थे, वहीं आज हजारों जीवों के लिए एक पूरा इकोसिस्टम मौजूद है. और इस असाधारण काम के लिए साल 2015 में जादव पैंग को पद्मश्री से सम्मानित किया गया. लेकिन दोस्तों शायद उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान कोई अवार्ड था ही नहीं, बल्कि वो जंगल है उनके लिए वो सम्मान जो आज भी उनकी मेहनत की कहानी सुनाता है. जादव पैंग की कहानी दोस्तों हमें एक बहुत खूबसूरत बात सिखाती है, ये बात कि बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती है. कभी कभी बस एक छोटा सा पौधा और उसे लगाने का बड़ा सा संकल्प चाहिए. तो अगली बार जब आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हों

0: शायद एक पल के लिए ये जरूर सोचेगा कि हो सकता है किसी ने कभी उस छोटे से पौधे को भी इसी उम्मीद से लगाया हो कि एक दिन ये किसी को छांव देगा, है ना दोस्तों? एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी। एक और ऐसी ही स्टोरी है जो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगी। एंड यस, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। इसे देखते हैं कौन है ये हमारे साथ। यहाँ पर हमारे साथ हैं रविंद्र राव फ्रॉम सन सिटी। लिखते हैं, नमस्ते, हेलो, आदाब निशा मैडम। तो आपको भी नमस्ते, हेलो, आदाब, एंड जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हैं कि रफ़ी साहब के गाने सुनाए आपने, बहुत पसंद आए हमें। एंड हमारे लिए बजरंगी भाईजान से अदनान सामी जी के जो कवाली सॉन्ग है वो सुनवाइएगा। तो ओके, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। एंड एक और मैसेज यहाँ पर है अश्विन जी हमारे साथ कोटी कुशल मार्केट से। लिखते हैं, जय श्री कृष्णा। तो आपको भी जय श्री कृष्णा। कहते हैं, केम छे तमारी तबीयत। और इस पे मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मारी तबीयत सारी छे, हूँ एकदम मजा मचू। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया मैसेजेस भेजने के लिए। एंड यस, आगे बढ़ते, 1:20 हो चुके हैं। उससे पहले एक छोटा सा संदेश और हाँ, एक गाने की तरफ भी चलेंगे। एंड यस, सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9।
1: ईरानी चाय,
2: बन मस्का,
1: हैदराबादी बिरयानी,
2: टंग दी कबाब,
1: कुर्बानी का मीठा,
2: शहदूद मलाई।
1: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
2: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
1: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
2: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
1: It's not just food.
2: It's culture, history and flavor rolled into one.
1: Jashne Hyderabad.

0: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఏఆర్ఓ, ఏఆర్ఓ లేదా డిఎల్ఓకు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
1: वेलकम बैक डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूं निशा आपके साथ. आज आपकी हमसफर और ये हमसफर अब आपसे कुछ और कहने वाली है. वेल दोस्तों, हमने बात की फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की और यहां पर ना हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों की कहानियों के बारे में जिन्होंने कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने संकल्प को नहीं छोड़ा, एक सपना देखा और उसे पूरा किया. कभी सोसाइटी के बारे में सोचा और कभी ऐसा कह सकते हैं उन प्राणियों के बारे में जो बोल नहीं सकते, है कि नहीं. एंड ऐसी एक कहानी थी फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की, जिन्होंने उन सांपों को देखा जो धूप में मर चुके थे और उन्हें लगा कि अगर यहाँ पर छाव होती, कुछ पेड़ होते, जंगल होता तो शायद वो सांप नहीं मरते. एंड ऐसी ही एक कहानी है ट्री मैन ऑफ तेलंगाना की. जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है ट्री मैन ऑफ तेलंगाना के बारे में? एक ऐसे इंसान के बारे में जिनकी पहचान किसी बड़े पद या शोहरत से नहीं बल्कि पेड़ों से है. नाम है दरीपल्ली रमैया, जिन्हें प्यार से लोग चेटू रमैया या वनजीवी रमैया भी कहते हैं. दोस्तों, तेलंगाना के खम्मम जिले के रहने वाले रमैया ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने में लगा दिया और कहा जाता है कि वो अपनी साइकिल पर पौधे और जेब में बीज लेकर निकल पड़ते थे. जहां थोड़ी सी भी खाली या बंजर जमीन दिखती, वहीं एक पौधा लगाने की कोशिश करते. और उनका ये जुनून इतना बड़ा था कि उनके नाम से 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का उल्लेख मिलता है. जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक इंसान ने आखिर क्यों अपनी पूरी जिंदगी पेड़ लगाने के नाम कर दी? क्या था वो सपना जिसने उन्हें सालों तक बिना थके इस काम से जुड़े रखा? और कैसे एक साधारण से इंसान को देश ने 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया? तो आइए जानते हैं और सुनते हैं ट्री मैन ऑफ तेलंगाना दरीपल्ली रमैया जी की कहानी. एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने सिर्फ पेड़ नहीं लगाए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली की उम्मीद बोई. वेल दोस्तों, उनकी कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन्हें खुद भी ठीक ठीक याद नहीं कि उन्होंने पेड़ लगाना आखिर कब शुरू किया था. शायद इसकी शुरुआत तो उनके बचपन में ही हो गई थी. रमैया जी

बताते थे कि बचपन में उन्होंने अपनी माँ को अगली फसल यानी आने वाली फसल के लिए सब्जियों के बीज संभाल कर रखते हुए देखा था, और शायद वहीं से उनके मन में बीज और पेड़ों के प्रति एक रिश्ता बनता चला गया। धीरे धीरे उन्होंने पेड़ों के बीज इकट्ठा करने शुरू किए, और फिर एक दिन ये सिर्फ शौक नहीं रहा, ये उनकी जिंदगी का मिशन बन गया। वो अपनी साइकिल पर निकल पड़ते, जेबों में बीज होते और साथ में होते छोटे छोटे पौधे। रास्ते में जहां भी कोई खाली या बंजर जमीन दिखाई देती, रमैया जी वहां एक पौधा लगाने की कोशिश करती। और दोस्तों, उन्होंने सिर्फ पौधे लगाए नहीं, उन्हें पाला भी, उन्हें पानी दिया, उनकी देखभाल की, और तब तक जुटे रहे जब तक वो छोटे छोटे पौधे पेड़ों में बदल नहीं गए। सोचिए, एक इंसान अपनी साइकिल पर पौधे लेकर निकलता है और फिर यही सिलसिला चलता रहता है दिनों तक, सालों तक और फिर दशकों तक। लगभग 5 दशकों से अधिक समय तक रमैया जी ने सोशल फॉरेस्ट्री के लिए काम किया। उन्होंने खम्मम और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए। सरकारी रिसर्चर्स के अनुसार उन्होंने 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने में योगदान दिया, और उनका सपना सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं था। दोस्तों, वो ऐसे पेड़ लगाना चाहते थे जो आने वाली पीढ़ियों के काम आए, जो छाया दे, फल दे और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद करें। तो जी हाँ, उनकी कहानी की एक और खूबसूरत बात ये भी है कि उन्होंने सिर्फ खुद पेड़ नहीं लगाए, बल्कि लोगों और संस्थाओं को भी ट्री प्लांटेशन को एक सोशल मूवमेंट की तरह अपनाने के लिए प्रेरित किया। आगे भी थोड़ी सी कहानी है और बातें काफी हो चुकी है, इसलिए मैं चलना चाहूंगी एक सॉन्ग की तरफ जो अगेन आपको काफी सारे जोश से भर देने वाला है ना? तो आप कहीं भी हो, किसी भी काम को कर रहे हो, थोड़ा बहुत जोश तो आएगा ही आपको इस गाने को सुनने के बाद। तो सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9 और ट्री मैन ऑफ तेलंगाना की आगे की कहानी हम जानेंगे इस गाने के बाद।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9। मैं हूं निशा आपके साथ, और हम यहां पर बात कर रहे थे ट्री मैन ऑफ तेलंगाना की एक स्टोरी जो है स्ट्रगल से सक्सेस तक की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 5 दशकों से अधिक समय तक रामैया जी ने सोशल फॉरेस्ट्री के लिए काम किया। उन्होंने खम्मम ज़िले और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए, और जैसा कि मैंने बताया कि सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्होंने 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने में भी योगदान दिया। और उनका सपना सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं था, वो ऐसे पेड़ लगाना चाहते थे जो आने वाली पीढ़ियों के काम आए, जो छाया के साथ साथ फल दे और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद करे। दोस्तों उनकी कहानी की एक और खूबसूरत बात ये है कि उन्होंने सिर्फ खुद पेड़ नहीं लगाए बल्कि लोगों और संस्थाओं को भी ट्री प्लांटेशन को एक सोशल मूवमेंट की तरह अपनाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों एक समय था जब लोग उन्हें उनकी जेबों में भरे बीजों और साइकिल पर लदे पौधों के साथ देखते थे, और धीरे धीरे जो जुनून था वही जुनून उनकी पहचान बन गया। फिर आया साल 2017, भारत सरकार ने पर्यावरण और ट्री कवर बढ़ाने के उनके असाधारण योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। लेकिन दोस्तों शायद रमैया जी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड कोई मेडल नहीं था, सबसे बड़ा सम्मान तो वो हरियाली थी जो उनके लगाए हुए पौधों से उगी, वो पेड़ जो आज भी लोगों को छाया देते हैं, वो हरियाली जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बची है। और शायद उनकी कहानी हमें एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरी बात सिखाती है कि हम में से हर कोई पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन हम अपने हिस्से की ज़मीन को थोड़ा हरा ज़रूर कर सकते हैं। और पौधे लगाना शायद एक छोटा सा काम लगे, लेकिन जब वही छोटा काम कोई इंसान पूरी जिंदगी करता रहे तो एक दिन उसके सामने एक पूरा जंगल खड़ा हो सकता है, जैसे आपने सुना फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की कहानी। तो अगली बार जब आपको कोई पेड़ दिखाई दे, बस एक पल रुक कर ये सोचिएगा कि हो सकता है ये पेड़ भी कभी किसी के हाथ में एक छोटा सा बीज रहा हो या एक छोटा सा पौधा रहा हो, है ना। एंड यस, इसी के साथ यही कहना चाहूँगी कि एक ऐसी कहानी थी ये जहाँ रास्ता आसान नहीं था लेकिन हौसला कभी कम नहीं हुआ। तो दोस्तों जी हाँ, जिंदगी जो है ना, जिंदगी में स्ट्रगल्स तो सबके हिस्से में आते रहते हैं, लेकिन वही स्ट्रगल्स हमें स्ट्रांग बनाते हैं और हमें सिखाते हैं कि सक्सेस सिर्फ मंजिल का नाम नहीं है बल्कि उस सफ़र का नाम है जो हमें हिम्मत देता है। तो अगर आज भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं आप, तो बस इतना याद रखिए दैट योर स्ट्रगल इज नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी, इट कुड बी द बिगिनिंग ऑफ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो जी हाँ, एक बार फिर से मिलेंगे यानी कल कुछ और इंस्पायरिंग कहानियों के साथ। तब तक कीप बिलीविंग, कीप मूविंग एंड कीप इंस्पायरिंग। सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9। और इसी के साथ मुझे याद आया कि एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आई हुई थी, एंड ये काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग है फ्रॉम द फिल्म बजरंगी भाईजान।

तो फिलहाल के लिए हम सुनते हैं इसी सॉन्ग को, अदनान सामी की आवाज़ में है ये, तो सुनते रहिए. ये है एफएम रेनबो 101.9, एंड आई थिंक इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी रविंद्र राव जी ने सन सिटी से, तो सुनते रहिए.

जिसकी तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है यार? मोहब्बत हिंदुस्तान में बजरंग।

0: दोस्तों, एक खूबसूरत सी कवाली बजरंगी भाई फिल्म, बजरंगी भाईजान फिल्म से। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9। मैं हूं निशा आपके साथ। और ये जो फिल्म थी ना, बजरंगी भाईजान, इस फिल्म ने हमें एक चीज़ बखूबी सिखाई, और वो है काइंडनेस। कि काइंडनेस किस हद तक जाकर भी की जा सकती है, किसी की हेल्प किस हद तक भी जाकर की जा सकती है। दोस्तों, कुछ बीमारियां होती हैं जो कंटेजियस होती हैं, और उनसे दूर रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से फैलती है। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से फैलती है, और उनसे भी दूर रहना ज़रूरी है। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं जो अगेन कंटेजियस होती है, और उनके करीब जाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि नेगेटिव चीज़ों से दूर जाना। और उनमें से कुछ चीज़ें है मुस्कुराहटे और काइंडनेस। और दोस्तों, काइंडनेस की बात करें तो इसकी सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसके लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी किसी को देखकर एक जेन्युइन स्माइल दे देना, ये भी एक काइंडनेस का एग्जाम्पल है। किसी परेशान इंसान की बात बस थोड़ी देर सुन लेना, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी लोगों के पास कोई रहता ही नहीं उनकी बातें सुनने के लिए, तो ये भी एक टाइप का काइंडनेस है। किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा देना, किसी ज़रूरतमंद की छोटी सी मदद कर देना, या फिर किसी ऐसे इंसान से पूछ लेना जो आपको हो सकता है जानता भी ना हो कि क्या तुम ठीक हो, है ना। किसी का उदास चेहरा अगर देखे हैं तो ये पूछने में कोई हर्ज नहीं है कि आप कैसे हो, है ना। तो ये छोटे छोटे गेस्चर्स शायद हमारे लिए कुछ सेकंड्स के हों, लेकिन सामने वाले के लिए उनका मतलब बहुत बड़ा हो सकता है। और काइंडनेस की एक और खूबसूरत क्वालिटी ये भी है दैट इट मल्टीप्लाइज। जी हाँ, आप किसी के साथ काइंड होते हैं, वो शायद आगे किसी और के साथ थोड़ा काइंड हो जाता है, और देखते ही देखते एक छोटा सा गेस्चर पूरी कम्युनिटी में फैल सकता है। इसीलिए शायद काइंडनेस भी कंटीजियस है, लेकिन ये वो नहीं है जिसे हम रोकना चाहते हैं, है ना, इसे हम बढ़ाना चाहते हैं। तो आज जरा अपने आसपास देखिए, किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, किसी को आपके इनकरेजिंग वर्ड्स की ज़रूरत हो सकती है, और शायद किसी को सिर्फ आपकी एक मुस्कुराहट की। बिकॉज समटाइम्स यू नो, यू डोंट नीड टू डू समथिंग बिग टू मेक अ डिफरेंस, यू जस्ट नीड टू केयर अ लिटिल। तो चलिए, आज से काइंडनेस को भी कंटीजियस बनाते हैं, एक स्माइल से, एक हेल्पिंग हैंड से, एक छोटे से गुड डीड से। क्योंकि जब अच्छाई एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँचती है ना, तो सिर्फ एक व्यक्ति की ज़िंदगी नहीं बदलती, पूरी कम्युनिटी थोड़ी और खूबसूरत हो जाती है। और कम्युनिटी खूबसूरत हो जाएगी तो ऑब्वियसली ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। एंड वो ज़िंदगी क्या जो खूबसूरत ना हो, है कि नहीं। क्योंकि ज़िंदगी प्रेशियस है ना, हमारी लाइफ प्रेशियस है, और कभी कभी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है इस चीज़ को समझने में। तो जितना जल्दी इस चीज़ को हम समझ जाएँ उतना अच्छा है, उतने अच्छे से जियेंगे, उतना टेंशन फ्री होकर जियेंगे। खैर, थोड़ा और टेंशन फ्री आपको कर देती हूँ, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। बस कुछ खूबसूरत सॉन्ग्स हैं यहाँ पर, वो सुनते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी FM रेनबो 101.9 के साथ। मैं हूँ निशा, आज आपके साथ, आपकी हमसफ़र। एंड यस, ये आपकी हमसफ़र अभी प्ले करना चाहती है एक और खूबसूरत सॉन्ग आपके लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश।
1: पिघला दे
2: హలో డియర్ లిసనర్స్, మన లైఫ్లో ఎక్కువ కేర్ చేసే వాళ్ళతోనే మనకి ఎక్కువ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ కూడా జరుగుతాయి. అవునా, మనం మన యాంగిల్ నుంచి చూస్తాం, వాళ్ళు వాళ్ళ యాంగిల్ నుంచి చూస్తారు. మనం మనమే కరెక్ట్ అని అనుకుంటాం, కానీ మేబీ అవతల వాళ్ళు కూడా అదే అనుకోవచ్చు కదా. అమ్మ మనకి చెప్పే కొన్ని మాటలు మనకి నసలాగా అనిపించవచ్చు, మన ఫ్రెండ్స్ చెప్పే నిజం మనకి హార్ష్గా అనిపించవచ్చు, ఒకరికి కరెక్ట్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంప్లీట్గా రాంగ్ అనిపించవచ్చు.

दोस्तों आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 के साथ। मैं उनिशा आपके साथ आज आपकी हम सफर इस खूबसूरत म्यूजिकल जर्नी का हिस्सा। एंड यस, आप जहां कहीं भी हो आप हमारे शो के साथ जुड़े रह सकते हैं थ्रू आर न्यूज ऑन एयर ऐप। जी हां, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा एफएम रेनबो हैदराबाद। एंड यस, हमारे कुछ लिसनर्स हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़े हुए हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर भी आपको बता ही देते हैं। नंबर है 4023234822। और यहाँ पर एक मैसेज है अश्विन जी का फ्रॉम कोटी कुशल मार्केट, एंड ये लिखते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा मैसेज है जो कहता है कि पत्नी सिर्फ जीवन साथी नहीं, पति की सबसे बड़ी ताकत होती है। एक पत्नी जब अपने पति के चरण छूती है तो वो सिर्फ परंपरा नहीं निभाती, वो अपने रिश्ते में सम्मान, विश्वास और प्रेम जोड़ती है। लेकिन एक सच्चा पति भी वही होता है जो अपनी पत्नी को कभी खुद से कम महसूस ना होने दे, जो उसके सम्मान की रक्षा

करे, उसकी आंखों के आंसू समझे और हर मुश्किल में उसका हाथ थामे रखे। तो अंत में लिखते हैं कि रिश्ता वहाँ खूबसूरत बनता है जहाँ अहंकार नहीं, सिर्फ प्यार और सम्मान होता है। तो जी हाँ, पत्नी पति का रिश्ता जीत या हार का है ही नहीं, एक दूसरे को समझने और साथ निभाने का होता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज, एंड ये मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये चीज़ें जानने की बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, एंड बहुत लोग जानते भी और इस खूबसूरत से रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से निभाते भी हैं। एंड कितनी बार मैंने सुना है कि जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं वो कहते हैं कि वैसे तो हमें पता नहीं है कि आफ्टर लाइफ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं चाहूँगी कि 7 जन्मों तक मेरा जो जीवन साथी है वो वही रहे जो इस जन्म में। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। इस मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी मैसेज को देखते हुए इसी खूबसूरत रिश्ते के नाम एक गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ अभी, एंड 1:55 हो चुके हैं, तो आपसे विदा भी लेना चाहूँगी इस वायदे के साथ की होगी फिर एक बार आपसे मुलाकात, और उस अगली मुलाकात तक अपना रखिए अच्छा सा ख्याल, अपने अपनों का भी रखिए अच्छा सा ख्याल, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो 101.9 को। तो मुझे यानी निशा को आज के लिए दीजिए इजाज़त, मुस्कुराते रहिए जैसा कि मैंने कहा, और मुस्कुराते रहेंगे तो दिन अच्छा ही जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा, सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए,
0: सजग रहिए।
2: FM Rainbow 101.9.

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। अभी आप मेरी रेडियो साथी प्रशांति से रिम जिम हैदराबाद सुन रहे थे। सामाइन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:30 और 17 सेकंड हुआ चाहते हैं। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।
1: अक्सर ये कहा

लम्हा जब कोई शिकस्त खा कर दोबारा उठने का इरादा करता है तो उसी लम्हे हकीकी जीत का आगाज हो जाता है। कामयाबी कोई ऐसी चीज नहीं जो इत्तेफाकन किसी की झोली में आ गिरे, ये उन सबर आजमा लम्हों की पैदावार होती है जब दुनिया आपकी हिम्मत टूटने का इंतजार कर रही होती है। जिंदगी बार बार आपका इम्तिहान लेगी, कभी हालात आपके मुखालिफ होंगे तो कभी वो लोग साथ छोड़ जाएंगे जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था। लेकिन अगर गिरने वाले शख्स ने संभलना सीख लिया है तो दुनिया की कोई ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। ये याद रखिए कि जीत का जायका उन लोगों के लिए ज्यादा मीठा होता है जिन्होंने भूख और प्यास में तवील सफर किया है। इंसानी नफ्सियात का एक पहलू ये भी है कि बाज़ औक़ात अच्छे लोग बहुत बड़े खसारे में रहते हैं। वो लोग जो दूसरों की खुशी की खातिर अपनी जात को पसे पुष्ट डाल देते हैं, उनकी रहमदिली उन्हें दूसरों की नाराजगी मोल लेने से रोकती है और अक्सर लोग उनकी उसी शराफत को उनकी कमजोरी समझकर उनका फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अपने ज़हनी सुकून से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कभी कभी खुद गर्जी नहीं बल्कि खुद पसंदी जरूरी होती है ताकि आप अपनी तवन्नाई उन लोगों पर जाया ना करें जो आपकी कदर करना नहीं जानते। हम अपनी नाकामियों को अक्सर अपनी शिनाख्त बना लेते हैं जो कि एक खतरनाक अमल है। ये हार हमें सिखाती है कि हार के साथ जीत भी जुड़ी है। जिंदगी नाम ही नशे वो फराज का है। हमारी जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। कभी कभी हमारे इर्द गिर्द की तारीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि ऐसा लगता है कि शायद अब कभी शहर का मुंह देखना ही नसीब ना हो। लेकिन ऐसे में एक जुगनू भी नजर आ जाए तो फिर से उम्मीद बन जाती है। ये उम्मीद हमें जीने का और कोशिश करने का हौसला फराहम करती है। खोल यूं मुट्ठी के एक जुगनू न निकले हाथ से, खोल यूं मुट्ठी के एक जुगनू न निकले हाथ से, आंख को ऐसे झपक लम्हा कोई ओझल ना हो। पहली सीढ़ी पर कदम रख आखिरी सीढ़ी पर आंख, पहली सीढ़ी पर कदम रख आखिरी सीढ़ी पर आंख, मंजिलों के जुस्तजू में राय का कोई पल ना हो। अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रही नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।

0: सामाइन बज़्म नरम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं बिसात गज़ल। बिसात गज़ल में मुमताज़ शायर मुसिफ इकबाल तौसीफ़ी का कलाम नशर करेंगे।
1: गज़लें पेश खिदमत हैं। पहली गज़ल का मतलब है, अपनी याद आई हम नहीं आए, शाम जे आई शाम के साए। अपनी याद आई हम नहीं आए, शाम जे आई शाम के साए। मैं अब अपने बदन की कैद में हूँ, मैं अब अपने बदन की कैद में हूँ, उसके हमराह हैं मेरे साए। मैं

0: चाहे सो फरमाएं, लोगों की ये बातें हैं, मैं कैसे यकीन कर लूँ? लोगों का भला क्या है, जो चाहें सो फरमाएं। और ये रोशनियाँ इतनी, शेर सुनिए, कि ये रोशनियाँ इतनी हम खुद को कहाँ ढूंढें, ये रोशनियाँ इतनी हम खुद को कहाँ ढूंढें, हल्का सा अंधेरा हो तो हम भी नजर आएं। ये रोशनियाँ इतनी हम खुद को कहाँ ढूंढें, हल्का सा अंधेरा हो तो हम भी नजर आएं, अशकों में न ढल जाएं, पलकों पर न थर आएं, कुछ ख्वाब अधूरे से ये तश्न तमन्नाएं। आखिर में गजल और पेश है कि दिल में है और आँख से नेहा है, दिल में है और आँख से नेहा है, मंजिल है कि गर्द कारवां है, दिल में है और आँख से नेहा है, मंजिल है कि गर्द कारवां है। वो शख्स है कौन, मैं कि तुम हो, वो शख्स है कौन, मैं कि तुम हो, कोई तो हमारे दरमियाँ है। वो शख्स है कौन, मैं कि तुम हो, कोई तो हमारे दरमियाँ है। और हाँ, सोच लिया है खूब हमने, हाँ मान लिया ये इम्तिहान है। और इस खेल को दिल लगी न समझो, इस खेल को दिल लगी न समझो, इस खेल में जान का जिया है, इस खेल को दिल लगी न समझो, इस खेल में जान का जिया है। और शेर सुनिए, इस दिल में रहेंगे हम वो बोली, इस दिल में रहेंगे हम वो बोली, मैंने कहा आपका मकान है, इस दिल में रहेंगे हम वो बोली, मैंने कहा आपका मकान है। और माने मेरी बात आ गए आप, माने मेरी बात आ गए आप, ये आपके पाँव का निशान है। और आखिरी शेर है कि तारा सा दुआ का आसमां पर, तारा सा दुआ का आसमां पर, सजदे का जमीन पर निशान है।
1: अभी आप बिसाते गज़ल के तहत जनाब मुसिफ इकबाल तौसीफ़ी की गज़लियात और कलाम समाअत फरमाने थे। सामाइन, आइए सुनते हैं गीत सुरीले गाते जा के तहत। आलमी योमे असाज़ा मौजू पर एक गीतों भरा फीचर। देखा ना कोहकन कोई फरहाद के बगैर, देखा ना कोहकन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं फन कोई उस्ताद के बगैर। आलमी योमे असाज़ा एक आलमी जश्न है जो मुस्तकबिल की नस्लों की तश्कील में असाज़ा की शानदार खिदमात को तस्लीम करने के लिए वक्फ है। हर साल लाखों तलबा, वालिदैन, तालीमी इदारे और हुकूमतें असाज़ा की लगन, मेहनत और अज़म को सराहने के लिए इकट्ठा होते हैं। असाज़ा ना सिर्फ इल्म बांटते हैं बल्कि तख्लीकी सलाहियतों को उभारते हैं, एतमाद पैदा करते हैं, तलबा को जिंदगी भर की कामयाबी के लिए तैयार करते हैं। निगाह बुलंद तो शीरी मखाल रखते हैं, निगाह बुलंद तो शीरी मखाल रखते हैं, असादेजा मेरा बेहद ख्याल रखते हैं।

2026 में आलमी योम असाजिजा 15 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, जो 1994 से दुनिया भर में असाजिजा को खिराज तहसीन पेश करने वाली रियायत को जारी रखे हुए हैं। ये दिन तात की हैसियत से मुतालिक 1966 की यूनेस्को आईएलओ सिफारिश की मंजूरी की भी याद मनाता है, जिसने असाजा के हकूक, जिम्मेदारियों और काम के हालात के लिए बैन अक्वामी मेयारात कायम किए। आलमी योम असाजा जश्न को बैन अक्वामी सतह पर तस्लीम किया जाता है और ये मेयारी तालीम की अहमियत और एक बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील में असाजा के अहम किरदार को उजागर करता है। दुनिया भर के स्कूल्स, कॉलेजेस, जामियात और तालीमी इदारे असाजा किराम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खसूसी तकरीबात, एजाजात की तकारीब, सकाफती प्रोग्राम और तारीफी प्रोग्राम मुनक़द करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, इल्म व हिकमत का अलमबरदार है तू, इल्म व हिकमत का अलमबरदार है तू, काफिले फिक्र का सालार है तू।

आज हम 5 अक्टूबर को आलमी यौमे असाजा के मौके पर एक ऐसे अजीम पेशे को खिराजे तहसीन पेश करते हैं जिसने नस्लों की तालीम और तरबियत माशरे की तामीर में बुनियादी किरदार अदा किया है। उस्ताद सिर्फ किताब पढ़ाने वाला शख्स नहीं होता, बल्कि वो इंसान की शख्सियत को संवारता है, इसकी सलाहियतों को पहचानता

और इसे मुस्तकबिल के लिए तैयार करता है। एक अच्छा उस्ताद अपने इल्म, किरदार, तजुर्बे और रहनुमाई के ज़रिए तलबा की ज़िंदगी पर देर पा असरात मरतब करता है।

सामाइन, अभी आप सुन रहे थे गीत सुरीले गाते जा के तहत आलमी योम असाजा पर एक फ्यूचर।

पेश है कल बज़्म-ए- रंग में नशर किए जाने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। कल रात 9:30 पर बज़्म-ए- रंग का आगाज़ होगा हरफे ताबिता से। तहरीर व पेशकश आयशा, तहसीन सुभानी की है। बेदारी कायनात के तहत वन प्रोडक्ट वन स्कीम पर तजम्मुल खान की तकरीर नशर करेंगे। गीत सुरले गाते जा में फिल्मी नगमे सुनाए जाएंगे और हमारी बज़्म का इख्तिताम पयाम शब पर होगा। ये था कल पेश किए जाने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। सामाइन, आइए बज़्म के आखिर में सुनते हैं पयाम शब। तहरीर व पेशकश जनाब जैदी की है।

तोड़ कर अहद करम ना आशना हो जाइए, बंदा परवर जाइए, अच्छा कफा हो जाइए। रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं बल्कि एतमाद, बर्दाश्त और एहसास से कायम रहते हैं। कभी किसी की बात या अमल से दिल आजारी हो जाए तो फौरन रिश्ता तोड़ देना दानिशमंदी नहीं। नाराजगी का इजहार जरूर करें मगर दरवाजा मुकम्मल बंद ना करें, क्योंकि सच्ची मोहब्बत और मुखलिस ताल्लुक में माफी, सब्र और वापसी की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए। इस शेर का बुनियादी पैगाम ये है कि कफा होना हक है मगर बेवफा हो जाना नहीं। शिकायत कीजिए मगर ताल्लुक खत्म ना कीजिए।

अभी आप पयाम शब्द समाप्त फरमा रहे थे, तहरीर और पेशकश जनाब जैरी साहब की थी।

सामाइन, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल है तो जहाँ है, जल है तो जुस्तजू है, आप है तो आप है, पानी की कदर कीजिए, पानी जिंदगी की अनमोल कहानी है। सामिन, इसी के साथ ही बज़्म निरंग अपने अख्तिताम को पहुंचती है। कल रात 9:30 पर बज़्म निरंग में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शब बख़ैर।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। ये चौबीस की घड़ी में रात की 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी खबरें दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: समाचार के साथ मैं वैष्णवी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहमलान ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से भेंट की। डॉ जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहमलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली में ने आज इसकी घोषणा की गई। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरो रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीतने के बाद अब 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है. हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं. 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी नमस्कार, धन्यवाद.
1: और अब हेडलाइंस के साथ है निशित कुमार.
0: द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज राइज, सेंसेक्स एड्स ओवर 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 22,550. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure, and Asian stock markets end in positive territory.
1: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक तेजी में रहे. सेंसेक्स में आई 450 अंकों से अधिक की बढ़त. निफ्टी 22,500 के स्तर को पार कर गया. भारत और स्विट्जरलैंड ने यातायात तकनीक, मोबिलिटी प्रणाली और मूलभूत ढांचे में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर किए हस्ताक्षर. और एशियाई शेयर बाजार बढ़त के साथ हुए बंद.

0: Before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब रुख करते हैं शेयर बाजार का. चार दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज लगभग 0.6% की बढ़त पर बंद हुए. सेंसेक्स 473 अंकों की तेजी दर्ज करता हुआ 72,282 पर बंद हुआ. निफ्टी 134 अंक बढ़कर 22,556 पर दर्ज हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.7% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक 0.5% की तेजी पर बंद हुए.
0: The benchmark domestic equity indices rose around 0.6% today, snapping a four-day losing streak. The Sensex gained 473 points to close at 72,382. The Nifty climbed 134 points to settle at 22,556. In the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index jumped 0.7% and the small-cap 100 index advanced 0.5%.
1: और सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 20 के शेयर आज बढ़त में रहे. सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में आईटीसी 4.5%, एटर्नल 2.5% और भारतीय एयरटेल 2.4% के उछाल में रहे. वहीं सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो एचसीएल टेक 3.7%, एचडीएफसी बैंक 2% और सन फार्मा और इन्फोसिस प्रत्येक 1.5% की गिरावट में रहे.
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 24 out of 28 sectors edged upwards. Among the top gainers, telecommunication jumped 2.1%.

0: कॉलर के स्तर पर बंद हुआ। इस बीच हमारे साथ हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उन्हें शामिल कर लेते हैं। जितेंद्र है जयपुर से, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए।
1: हाँ हाँ सर, आपका भी मैडम धन्यवाद। सर मेरा दो प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, मैं नाम तो नहीं लूंगा नियम के मुताबिक। एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसका र्यूमर कुछ दिन पहले आया था, तो उसके काफी प्राइस डाउन हुए, अभी 700 पे चल रहा है, तो मैं उसमें पिछले 2-3 महीने से बाइंग कर रहा हूँ, तो क्या स्ट्रेटेजी सही है पहला। और दूसरा, जो रजिस्ट्रार कंपनी होती है आईपीओ का जब आता है रजिस्ट्रार कंपनी, तो भी बहुत पुराना रजिस्ट्रार कंपनी है, उसका आईपीओ आया था तो उसमें मैंने लिया था तो 150-200% प्रॉफिट पे है, तो उसको क्या होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्योंकि वो रजिस्ट्रार कंपनी है तो चलेगा ही चलेगा कंपनी जैसे।
2: जितेंद्र जी, आपने शुरू में कहा कार्यक्रम के नियम के मुताबिक हम कंपनी का नाम नहीं ले सकते हैं, और आपने दो खास कंपनी के शेयर के बारे में पूछा है, तो हम क्षमा चाहेंगे, हम उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते।
0: और आपकी एक छोटी सी टिप्पणी, आज जो हमने बढ़ा देखी है बाजार में 4 दिनों के बाद, इसको आप कैसे लेते हैं? अगर थर्सडे को भी हम देखें तो एंड में 700 पॉइंट्स की रिकवरी हुई थी, सो क्या कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट लौट रहा है?
2: देखिए, दो वजह है। एक तरफ आप देखिए कि सऊदी अरब ने जो है वो तेल के दाम घटा दिए, तो वो एक अच्छी बात रही, लेकिन दोपहर होते होते एक खबर आई कि वहाँ पे पाइपलाइन बंद कर दिया गया क्योंकि उस पर हमला हुआ है, तो एक मिश्रित था। तो अगर वो खबर नहीं आती तो शायद आज शेयर बाजार और ऊपर जाता। तो एक तो आप कह सकती हैं कि इसका एक सकारात्मक रुख हमने देखा है। दूसरी तरफ क्या है कि बाजार बहुत नीचे आ चुका है और अब एक खरीदारी का, जिसे कहते हैं कि एक माहौल बन सकता है, क्योंकि अब निचले स्तर पर आपको बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो बहुत ऊंची कीमत पर थे, उनके भाव बढ़े हैं, तो उसका असर जो है आप देख रहे हैं कि आज बाजार में जो हमने सकारात्मक रुख देखा। और आपने बीते सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन देखे, उस दिन भी तेजी आई। और एक और जो हमने अच्छी चीज देखी है कि जो हमारे विदेशी निवेशक जो थे, जो अभी लगातार पैसा निकाल रहे हैं, बीते कुछ दिनों से उन्होंने नेट बाइंग करी है, तो ये ऐसे कारण है जिसका असर हमने देखा है। मूल रूप से आप कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो है वो हमारे अनुकूल हैं, और आप केवल भारतीय बाजार की बात नहीं करें, एशिया के तमाम शेयर बाजारों की बात करें, क्योंकि दक्षिण कोरिया आज बंद था उनका बाजार, बाकी जितने भी बात करें, चाहे चीन की बात करें, हांगकांग की बात करें, सिंगापुर की बात करें, वहां परिस्थिति सकारात्मक रही, तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जब सकारात्मक होंगी तो बाजार में भी आपको सकारात्मक माहौल दिखेगा।
3: शिशिर जी, यू टॉक्ड अबाउट द एफआईआईज एंड एफपीआईज काइंड ऑफ ट्राइंग टू मेक अ कमबैक टू द इंडियन मार्केट्स, बट इफ यू लुक एट द यूएस बॉन्ड मार्केट्स, द ट्रेजरी yields are still kind of, you know, pretty lucrative as compared to the Indian stock market. And of course, we are not talking of the Asian markets here. So do we really see, MPC is also, you know, the outcomes of it will come in a couple of days. So how do you see it panning out? That is one. And of course, FPIs and FIIs, we do understand that they constitute the, you know, quite some pie of the Indian stock market when investing is, wherein investing is concerned. So my question is that do we see the resurgence, as you mentioned in your opening comments, that the markets are already at an almost, you know, mouth-watering levels with most of the blue chips kind of, you know, trading at pretty discounted rates. So how do you see this in the coming days?
2: Coming to your first point about the yield, No doubt American bond market yield is very lucrative. Hmm. And any investor, any investment house, any institutional investor would love to go there because they are going to have a better return. And also there is assurance, because when you are buying sovereign, That means you are getting the assurance.
3: Assured, yes.
2: Not just on the principal, but also on the return. So you have a certain return. But if you go to the equity market, you cannot have any kind of surety about principal, forget the interest. Mm. So that is one thing which need to be kept in mind. But what we are seeing today, what we have seen today, is more like what we call as an opportunity buying. You found some stocks at a low level and you thought it's a good time to enter. And if the US yield is still high, tomorrow I can just take out the money and go to US and buy the bond, or give the money to the US government. Mm. So this is just a temporary phenomenon. I'm not seeing the kind of, I mean, coming back on a regular basis. You may see some kind of value buying or opportunity buying on a frequently basis, but on a one particular day or another particular day. Coming to the RBI, which you just mentioned that MPC meeting has started. Mm.

0: ऑल्दो वो लिक्विड और अनलिक्विड वाली चीज जरूर है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रतिक्रिया देना चाहें तो।
1: देखिए, जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि शेयर और सोना, देखिए मेरे हिसाब से आप दोनों में आप कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से अगर आपकी उम्र अगर 50 वर्ष से कम उम्र की है तो आप शेयर में उसका पोर्शन ज़्यादा रखिए। अगर आप 60% रख सकते हैं, 40% आप सोने में रख सकते हैं, और अगर आपकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा की है तो आप थोड़ा सा उसको पलटिए। और उसके अलावा ये भी है कि उसका एक हिस्सा आप ऐसे जगह पे लगाएं जो आपके लिए सुरक्षित जो है वो निवेश बन सके, जिसे हम डाकघर की बचत योजनाएं कहते हैं या बैंक के फिक्स डिपॉजिट है, वो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि क्या हम 20% देकर के एक फ्लैट बुक कर लें, देखिए निश्चित तौर पर घर में निवेश करना, चाहे वो आप उसको इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं या निवेश करने के लिए ले रहे हैं, एक अच्छा जरूर निवेश होता है। लेकिन ध्यान रहे कि आप जिस भी बिल्डर को चुनें वो एक विश्वसनीय बिल्डर हो, जिसकी डिलीवरी का रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसने काम अच्छा किया हो। क्योंकि दिक्कत क्या होती कि कई बार आप पैसा लगा देते हैं और उसमें अगर जितनी भी देरी होती तो आपका पैसा एक तरीके से फंस जाता है। तो अगर आप डिलीवरी वाले सिस्टम पे देखें कि यदि वो बेहतर है तो वो आपके लिए अच्छा होगा। मेरे ख्याल से आप ये भी कर सकते हैं कि 100 को आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए। एक, जैसा मैंने कहा, आपकी उम्र के हिसाब से शेयर और सोना। दूसरा विकल्प है शेयर, सोना और डाकघर की बचत योजना है। और आप पूरा का पूरा पैसा अगर रियल एस्टेट में ही लगाना चाहते हैं तो आप बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें,
2: और बिल्डर रेरा अप्रूव भी हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
3: बिल्कुल।
2: नेक्स्ट कॉलर इज मोहक फ्रॉम फरीदाबाद। मोहक, वेलकम।
4: हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पैनलिस्ट। माय क्वेश्चन इज कंसीडरिंग द वोलेटाइल माइक्रो इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड, इज इट बेटर टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक बॉन्ड्स एज कंपेयर्ड टू इक्विटी मार्केट्स?
1: Yeah, that's a good option, but I would say that it also, because I mean the prices at which the most of the value stocks are available, they are at a very lucrative, and you can get an opportunity to enter into those stocks. So you can have some kind of hedging through the bond. I mean, bond is, use the bond as a hedging. So suppose that you have say 100 rupees, and if your age is say less than 40 years, then you can go for 60-40, 60 in the equity and the 40 in the bond. But if you are exceeding 50, then I would say that put 60 rupees in the, or 70 rupees in the bond, and then put a remaining 30 rupees in the equity, because there you will have less time as compared to when you are less than 40 years. So this kind of equation you can say, and at any given point of time, if the value stock is available at a very low price, it is good to enter. You may have some kind of volatility, but if you are giving some time to the stock market, to your capital, then there is a good possibility of getting good return, because stock market is not just about investing money, it is also about investing patience.
3: And briefly, bond market mein risk कम है,
1: बहुत कम होता है वहाँ पर। आपको मूल और ब्याज की एक गारंटी जो है सरकार की, अगर आप सरकारी प्रतिभूति में लगा रहे हैं तो आपको वहाँ मिलता है। अगर कंपनियों के बॉन्ड में आप लगा रहे हैं तो थोड़ा जोखिम होता है, अगर कंपनी डूब गई तो क्या होगा। लेकिन उस सूरत में भी जो कर्ज देने वाले होते हैं उनका पहला हक बनता है, जबकि शेयर में जो पैसा लगाते हैं उनका आखिरी में हक बनता है, तो वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है।
3: अब हमारे अगले कॉलर है नई दिल्ली से अमित झा। अमित जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछे।
5: नमस्कार सर जी को।
3: जी नमस्कार।
5: जी ना सर, नमस्कार सर।
1: नमस्कार
5: सर, आपसे प्रश्न ये है कि अभी जो इस हफ्ते से Q2 के कंपनी का नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है सर, तो इसी हफ्ते दिग्गज IT कंपनी के भी रिजल्ट आने हैं सर, तो IT कंपनी का कैसा मतलब प्रदर्शन रह सकता है? और दूसरी चीज सर कि ऑटो और मेटल अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए आज की रैली में देखा जाए तो, और ऑटो सेल्स के पिछले दिनों आंकड़े जो आए थे सर वो खासा उतना तो वो निराशाजनक थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद ऑटो सेक्टर की कंपनियां बहुत बुरी तरह से पीड़ित थी सर। धन्यवाद सर।
1: देखिए, मेटल मेरे हिसाब से समय एक बहुत ही बेहतर विकल्प है, और मेटल कंपनियों के शेयरों में अगर मैं आज की बात करूं तो 2-3 कंपनियों के जो पहली तिमाही के नतीजे रहे हैं, वित्तीय नतीजों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कामकाज की बात कर रहा हूं, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो उसमें उम्मीद एक ज़्यादा है। ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए मुझे लगता है कि निवेशक त्योहारी मांग का इंतजार कर रहे हैं। अगर देखिए, अब अगले हमने 10 दिनों के बाद जो है हमारा नवरात्रि शुरू हो रहा है, उस समय में उसकी खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है, तो आप देखेंगे कि ऑटो में जो है वो वापसी एक होगी। और आज की रैली में भले उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि आज की रैली

0: अगर आपने देखी होगी तो उसमें ज़्यादा जो योगदान था उसमें जैसे एफएमसीजी का योगदान था या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का योगदान था, वहाँ पे अगर आप आईटी सेक्टर की बात करेंगे तो आईटी सेक्टर में नुकसान ही हुआ था। लेकिन मेरे हिसाब से जो तिमाही नतीजे आएंगे जो 10 और 11 से शुरू होने चाहिए, अमूमन 10 और 11 तारीख को पहली बड़ी कंपनी के नतीजे आते हैं, वो नतीजे थोड़े से अच्छे रह सकते हैं, उम्मीद ये की जा रही है। क्योंकि बीच में जब एआई कंपनीज ने कहा कि हमें ज़रूरत तो पड़ेगी ही, ये जो कन्वेंशनल कंपनीज हैं जिनके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा एआई कंपनीज ने भी कहा कि हमें अपनी गति को जो है वो धीमी करने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि ऑटो और आईटी दोनों में एक अगर 3 से 5 साल का टाइम होराइजन लेकर के चलें तो एक बेहतर विकल्प है। लेकिन इनमें जो मेरे लिए जो पहला पसंद आएगा वो मेटल सेक्टर होगा।
1: लेते हैं अगली खबर। भारत के इस वर्ष दिसंबर तक कम से कम 3 और देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते संपन्न करने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि कनाडा और रूस सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौतों पर बातचीत चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement. The agreement's negotiations are still ongoing, although we'd like to believe that both the sides have reached a plateau beyond which giving or taking might be very, very difficult. But maybe if there are rooms to operate from, both sides would do it.
1: So, briefly, आप जैसा भी पूछ रहे थे मेरे को एंकर, उसी से जुड़ी ये स्टोरी है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हैं और जैसा इन्होंने कहा कि इंडिया ईयू डील एक परफेक्ट एग्जांपल है परफेक्ट डील की। आपको लगता है कि जो इसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात हो रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है?
0: दो पहलू है, एक हमारा जब हम मुक्त व्यापार समझौता करते हैं और एक हमारा निवेश संवर्धन समझौता करते हैं। ये जो आज वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो बात कही है वो निवेश संवर्धन के ऊपर बातचीत की है, और देखिए उसमें जो हमारा पुराना जो बना हुआ था उसमें काफी बदलाव किया जा रहा है और कोशिश ये है कि उसमें विवाद कम से कम हो ताकि निवेशकों को एक एक सुरक्षित और एक निश्चित करने वाला माहौल मिले।
3: राइट, एंड द नेक्स्ट कॉलर इज रत्नाकर फ्रॉम मुंबई। रत्नाकर जी,
4: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि जब भी शेयर मार्केट में हम हमारे स्क्रिप्ट खेल करते हैं तभी जो कुछ उसमें अमाउंट आती है उसमें से इनकम टैक्स जो आता है वो कट होता है क्या? कितना इसके ऊपर टैक्स कट होता है क्या? और वो है, और आने वाले समय में ऑयल के शेयर कैसे रहेंगे?
0: रत्नाकर जी, अगर आपने बेचा है कोई भी शेयर और अगर आपको मुनाफा हुआ है तो आपके एआईएस में वो दिखेगा, फिर आपको जब आप उस पर कैपिटल गेन जो है वो अलग से पे करेंगे। आपके पास जो बिक्री के बाद पैसा आता है आपके खाते में उसमें एसटीटी जरूर कटा हुआ होता है, एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो है, बाकी कैपिटल गेन आपको अलग से उसका भुगतान करना पड़ता है। दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि तेल कंपनियों के शेयरों की क्या स्थिति होगी। देखिए, जो भी तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयरों में आप थोड़ी तेजी देखेंगे जब कभी भी कच्चा तेल ऊपर जाएगा, और अभी अगर मैं गलत नहीं हूं तो $100 प्रति बैरल के ऊपर भाव जो है वो बने हुए हैं। लेकिन जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके लिए शायद अच्छी खबर नहीं रहेगी।
1: जैसा हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। आरबीआई की नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है, कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर हैं और खाद्य मुद्रास्फीति पर चिंता बनी हुई है। समिति 3 दिवसीय बैठक के अंत में निर्णय की घोषणा से पहले मुद्रास्फीति के आउटलुक और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। रेपो दर में आखिरी बढ़ोतरी फरवरी 2023 2023 में हुई थी जब आरबीआई ने दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। इसके बाद 2023-24 के दौरान दर में कोई बदलाव नहीं किया गया और 2025 में दर में कटौती का चक्र शुरू हुआ। वर्तमान में नीतिगत रेपो दर 5.25% है। जैसा कि आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आशा है कि कल कटौती बढ़त होगी 25 आधार।

0: जी, ये इसलिए भी है क्योंकि महंगाई दर में बढ़ने का सिलसिला बना हुआ है, तो शायद हमें उसका असर नीतिगत ब्याज दर पे देखने को मिलेगा।
1: एंड हाउ मच डज द यू नो द फेड काइंड ऑफ सेट्स द टेम्पलेट फॉर दैट?
0: See, Federal Reserve is always a template for many of the developing economies and also the emerging markets. So when the Federal Reserve is increasing the rate, that is giving a signal that the global inflation is also on the rise.
1: Right.
0: So that could be one of the reason why RBI is also talking about that.
1: Right.
2: अब चलते हैं एशियाई बाजारों की ओर। एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो वहां पर आज बढ़त का रुख था। ताइवान का ताइएक्स 2.5% उछल गया, जापान के निकेई 225 सूचकांक में 2.4%, सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.5% और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.3% की वृद्धि हुई। इस बीच चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार आज बंद थे।
1: And meanwhile we are joined in by your caller from Assam, Shukrat Limbo. Welcome.
3: सर, गुड इवनिंग सर।
2: जी, जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए।
3: सर, मेरा प्रश्न ये है कि सर, एनपीएस में जो सरकार द्वारा कोई भी स्कीम में एनपीएस में लगाया हुआ है सर, तो वो सरकार द्वारा लगाया हुआ है तो हम उसको स्कीम चेंज करने से हमें फायदा है या उसी सरकार द्वारा लगाया हुआ स्कीम में रहने से फायदा है सर? मेरा प्रश्न यही है।
0: नहीं, बिल्कुल, आप साल में एक बार बदल सकते हैं और आप तय कर लीजिए कि आपको ज्यादा सुरक्षित माध्यम अपनाने हैं या फिर आप शेयर में पैसा रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है।
2: और एक इम्पोर्टेंट खबर, नई परचेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर प्रणाली इस महीने की 15 तारीख से लागू हो जाएगी। नए ढांचे के अंतर्गत 2000 रुपए तक के यूपीआई लेन देन पर एमडीआर शून्य होगा। छोटे व्यापारी इस चिंतन में होंगे कि क्या उन्हें अपने मौजूदा क्यूआर कोड को अपग्रेड करने या बदलने की जरूरत है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के अनुसार ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौजूदा क्यूआर ढांचा सामान्य रूप से कार्य करता रहेगा। व्यापारियों को अपने वर्तमान भौतिक QR स्टैंड या साउंड बॉक्स को बदलने, फिर से पंजीकृत करने या संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना किसी रुकावट के दुकानों पर वर्तमान में प्रदर्शित सभी UPI QR कोड पेमेंट को प्रोसेस करते रहेंगे। NPCI ने स्पष्टीकरण दिया है कि व्यापारी पहले की तरह ही अपनी मौजूदा व्यवस्था के द्वारा ही ग्राहकों से राशि प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी बैंक शाखा में जाने की, QR कोड बदलने की या अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: Crude oil prices declined today as exports from West Asia increased and G7 nations pledged to boost supplies. Brent crude was trading 0.4% down at $101.88 per barrel. West Texas intermediate crude was trading 1.4% lower at $89.78 per barrel at the time of writing this report.
2: उधर भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज मामूली बढ़त से 1,48,198 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 1.5% के उछाल से 2,24,157 रुपए प्रति किलो पर थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए शिशिर और हमारे श्रोताओं को आपने बहुमूल्य जानकारी दी।
0: धन्यवाद,
1: थैंक यू शिशिर जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। Benchmark domestic indices rise, Sensex adds over 450 points, Nifty settles above 22,550. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure, and Asian stock markets end in the positive territory. That's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

11:40 और 55 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 MHz है ये, और गीत मेरे मनमीत में आपके संग है अर्पना। शुरू करते हैं गीत मेरे मनमीत की, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुरी की आवाज के साथ गीत होगा। गीत के जो संगीतकार हैं वो हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म जिगरी दोस्त से ये गीत होगा। और इसके बाद आप सुनेंगे अगला गीत जावेद अख्तर का लिखा हुआ है, लता जी की आवाज में है, और ये गीत है सिलसिला फिल्म से। तो बैक टू बैक इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर। ये है गीत मेरे मन में।

11:52 और 13 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

एस डी बर्मन का संगीत है, हसरत जयपुरी के लिखे हुए बोल हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। ये गीत आपने सुना फिल्म तेरे घर के सामने से। अगला गीत जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है फिल्म पड़ोसन से, आशा जी और लता जी की आवाज में होगा। इसका संगीत आर डी बर्मन साहब ने दिया है। आप इस गीत का आनंद लीजिए। इस गीत के बाद FM गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दे इजाजत, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार

0: व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहामला ने कहा कि यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुरजेटो अब्लाक्वा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अंकरा रीसेट के दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में एसआईआर से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागिल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागिल ने चेनरे रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। अगले 4 मैच 9, 11, 14 और 17 अक्टूबर को रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10:59 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ।

अधूरा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। योगेश गौड़ ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। कभी कभी ना दिन इतना

थका देने वाला होता है कि शाम होते होते समझ ही नहीं आता कि आखिर किया क्या जाए। मन थोड़ा उदास है, शरीर थका हुआ है और दिमाग में न जाने कितनी बातें एक साथ चल रही हैं। लेकिन ऐसे ही वक्त में एक गीत, एक धुन, एक आवाज

वाकई कभी कभी जिंदगी बस गुजर रही होती है, दिन आते हैं, रातें ढलती हैं, मगर किसी खास एहसास की कमी बनी रहती है। और फिर कोई अपना जिंदगी में आता है तो लगता है जैसे सब कुछ अचानक बदल गया हो, जैसे बेरंग दिनों में रोशनी उतर आई हो। आंधी फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

आप तो ऐसे न थे फिल्म से आपने ये नज्म सुनी मनहर की आवाज में। निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने। कहते हैं ना, कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ आते नहीं बल्कि उसमें इस तरह बस जाते हैं कि फिर उनकी मौजूदगी हर जगह महसूस होने लगती है। सुबह की पहली चाय हो, शाम की तन्हाई हो, कोई अनजान सा रास्ता हो, या यूं ही खिड़की से बाहर देखते हुए गुजरता हुआ कोई ख्याल।

कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सामने ना ना भी हो तो ख्यालों की रह गुजर पर हमेशा साथ चलते हैं, और कभी अचानक नजर उठे तो लगता है जैसे वही ख्याल आज हकीकत बनकर सामने से गुजर रहा हो। ये इश्क नहीं आसां फिल्म से आपने ये नज्म सुनी। अनवर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:37 और ठीक 40 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दीदारे यार फिल्म से आपने ये नज्म सुनी। इसकी गाया इसे लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कभी कभी कुछ लम्हे बस महसूस करने के लिए होते हैं, जहां खामोशी भी एक नगमा बन जाती है और पर्दा उठता है तो सामने आती है मोहब्बत की एक नई तस्वीर।

कभी कभी दिल के किसी खामोश कोने में एक ख्याल यूं ही दस्तक दे जाता है कि शायद कुछ रिश्ते इत्तेफाक नहीं होते, उन्हें ऊपर वाला बड़ी खूबसूरती से हमारे लिए चुनता है। और फिर दिल कह उठता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कभी कभी फिल्म से आपने ये गजल सुनी मुकेश की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से आपने ये गीत सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

वक्त हुआ है 12:55 और ठीक 11 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहरमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहरमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहरमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहरमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड

समुदायों के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटे अबलाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अकरा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज एमवी रोयाद ममादोव पर हुए हमले में दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल तीन भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में एसआईआर से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ। कभी कभी जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जब शब्द कम पड़ जाते हैं और एक गीत दिल की सारी बातें कह जाता है। तो क्यों ना आज की इस खूबसूरत रात को कुछ यादों के नाम किया जाए, कुछ मुस्कुराहटों के नाम किया जाए और उन गीतों के नाम किया जाए जो बरसों बाद भी दिल में वैसे के वैसे बसे हैं।

अनुराधा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया पंडित रविशंकर ने। कभी कभी किसी की याद में बीता हुआ एक एक पल सदियों जितना लंबा लगता है। दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, मगर रात, रात तो जैसे सवाल बनकर सामने बैठ जाती है। नींद आंखों से दूर, यादें दिल के करीब, और इंतजार हर पल और गहरा होता जाता है।

साधना फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और रफी की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एन दत्ता ने। कभी कभी दिल को समझाना पड़ता है, आखिर यूं तड़पने और किसी को तड़पाने से हासिल ही क्या होगा। मोहब्बत में इंतजार अपनी जगह है, बेचैनी अपनी जगह, लेकिन दिल को तो सुकून तब मिलता है जब भावनाओं को एक खूबसूरत गीत का सहारा मिल जाए।

जब प्यार बेशुमार मिले तो दिल खुश भी होता है और कहीं उसे खो देने से घबराता भी है। अनुपमा फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

वक्त फिल्म का गाना आपने सुना। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने।

वक्त हुआ है 1:29 और ठीक 9 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मोहब्बत में सबसे बड़ी चाहत होती है किसी का साथ और उस रिश्ते में वफा का यकीन। दिल बस इतना चाहता है कि प्यार का ये सहारा यूं ही बना रहे। धूल का फूल फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एन दत्ता ने।

कभी कभी किसी अपने का साथ आईने जैसा होता है, जो हमारी उदासी भी देखता है और उसे मुस्कान में बदलने की कोशिश भी करता है। साथ ही फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने।

जब कोई अपना दूर हो जाए तो सिर्फ दिल ही नहीं, जैसे पूरी जिंदगी अपनी रंगत खो देती है। हर आंसू में उसकी कमी, हर सांस में उसकी बेचैनी और हर पल में उसी की याद बस जाती है। किनारे किनारे फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। न्याय शर्मा ने इसे लिखा और संगीत दिया जयदेव ने।

का सन्नाटा हो, आसमान में चांद हो और दिल में अनगिनत सवाल, ऐसे में इंसान अपनी बात किससे कहे। शायद इसीलिए दिल ने चांद को अपना हमराज बना लिया है, एक ऐसी मोहब्बत जो आज भी जवाब तलाश रही है, आखिर गलती कहाँ हुई और फैसला इतना दूरियों भरा क्यों हुआ। मिस मेरी फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि दो लोग अलग होकर भी एक ही एहसास में धड़कते हैं। धड़कने दो हैं, मगर उनमें बसी चाहत एक है, जज्बात एक है और दिल की आवाज भी एक है। इंसाफ फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और तलत महमूद की आवाज में। असद भोपाली ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने।

अनहोनी फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 17 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहामलान ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुजेटे अब्लाकुआ के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार

0: भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा के अकरा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज एमवी रोयाद ममादोव पर हुए हमले में दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल तीन भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में एसआईआर से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरेथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम की प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चाइना ओपन टेनिस में सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान डेनिल मेदवेदेव के अयोग्य घोषित होने के बाद नोवाक जोकोविच फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला पांचवी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलेक्स डी मिनोर से होगा। महिला टेनिस में अमेरिकी खिलाड़ी कोको गॉफ ने चीन के खिलाड़ी सुन शिन रान को 7-5, 6-1 से हराकर अंतिम 16।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। India and Switzerland yesterday signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between PM Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, PM Modi said, during their meeting, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: President Draupadi Murmu met the President of the Swiss Confederation at Rashtrapati Bhavan yesterday and hosted a banquet in his honor. Welcoming President Parmelin to India, President Murmu said that India and Switzerland enjoy warm and cordial relations based on the shared values of democracy and the rule of law. The two leaders agreed that close cooperation between India and Switzerland can bring immense benefits to the people of both countries. They expressed confidence that this visit will contribute to further strengthening relations between the two countries. Vice President C.P. Radhakrishnan also attended the banquet. The stage is set for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for all 6 seats will be held today, while counting of votes will take place on Friday. the assembly seats going

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ।

लव इन टोक्यो फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। रात सुरमई है, फिजा सुरीली है, और ऐसे में जब कोई पुराना नगमा कानों में उतरता है तो रात की खामोशी भी जैसे संगीत बन जाती है।

कुछ रिश्ते सिर्फ एक जिंदगी के नहीं होते, उनके साथ निभाने का ऐसा वादा होता है जो जन्मों की सीमाएं भी पार कर जाए। मोहब्बत जब दिल में पूरी तरह उतर जाए तो हर जन्म उसी एक साथी के नाम लगता है। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना आपने सुना, रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

मोहब्बत में एक मीठी सी शरारत भी होती है। अपने प्रिय को दुनिया की नजरों से बचाकर दिल के सबसे करीब रखने की चाहत, यही तो है उस प्यार का खूबसूरत एहसास, जहां डर बस इतना है कि कहीं नजर न लग जाए, कहीं ये प्यारा सा साथ खो ना जाए। नाइट इन लंदन फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कभी कभी किसी अपने के जाने की आहट ही दिल को बेचैन कर देती है। कदम रुकते नहीं, मगर दिल चाहता है कि ये पल यहीं ठहर जाएं। जाने वाले से बस इतनी सी गुजारिश, जरा ठहरो, क्योंकि तुम्हारे जाते ही किसी का दिल उदास हो जाता है। अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गाना आपने सुना, मुकेश और शारदा की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 2:32 और ठीक 29 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं आप? हमें भी साथ ले चलिए। आखिर जहाँ आपकी ये राहें जाती हैं, वहाँ हमारी यादें भी तो आपके साथ चलना चाहती हैं। एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गाना आपने सुना, रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया।

जाइए, आप कहाँ जाएंगे? नजरें लौटकर फिर यहीं आएंगी और आपकी राहों के पीछे पीछे मेरी आवाज दूर तक चली जाएगी। मेरे सनम फिल्म का गाना आपने सुना। आशा भोसले की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी ने ये गीत लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

जरा ठहरिएगा, ये दिल अभी आपकी मौजूदगी में ठहरा हुआ है। पहले आपको दिल में बसा लेने दीजिए, इस पल को जरा जी लेने दीजिए। मोहब्बत इसको कहते हैं, फिल्म का गीत आपने सुना, रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

मोहब्बत अगर सच्ची हो तो जन्मों की दूरियां भी उसे जुदा नहीं कर सकती। 100 बार जन्म लेने और 100 बार फना होने के बाद भी साथ वही रहेगा। जहां तुम हो वही हम होंगे और मोहब्बत हर बार हमें फिर एक कर देगी। उस्तादों की उस्ताद फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। असद भोपाली ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने।

कुछ रिश्ते दूर होकर भी दिल से कभी दूर नहीं होते। उनकी याद आंखों में सावन बनकर बरसती रहती है, यही कसक है इस गीत में। आरजू फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 2:57 और ठीक 43 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही नीता अग्रवाल के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहामलान ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटे अब्लाक्वा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अक्रा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद ममादोव पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि

0: एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैरकानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम की प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। India and Switzerland yesterday signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between PM Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas, including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, PM Modi said during their meeting, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने military exchange और defense production में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। Nuclear energy में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: President Draupadi Murmu met the President of the Swiss Confederation at Rashtrapati Bhavan yesterday and hosted a banquet in his honor. Welcoming President Parmelin to India, President Murmu said that India and Switzerland enjoy warm and cordial relations based on the shared values of democracy and the rule of law. Vice President C.P. Radhakrishnan also attended the banquet. The stage is set for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for all 6 seats will be held today, while counting of votes will take place on Friday. The assembly seats going to polls are Madurantakam and Dharapuram in Tamil Nadu, Tattanchavadi in Puducherry and Rejinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Nagaon Lok Sabha constituency. Defence Minister Rajnath Singh will launch Fleet Support Ship 1, FSS-1 and lay the keel of Fleet Support Ship 5, FSS-5 at Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam today. He will also inaugurate the upgraded Slipway 4 and 300-ton Goliath crane. Ministry of Defence said that the upgraded Slipway 4, with its extended length and enhanced load-bearing capability, supported by the 300-ton Goliath crane, will enable the shipyard to build and launch vessels of up to 45,000

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11:17। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, हम सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सफर में एक दूसरे के हमराही बनते हैं। इस सुरीले सफर के हमराही हैं हम सभी, और जब हमराही अच्छे हो तो सफर जीवन को या कुछ घंटे मिनट या लम्हात का कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल होता है ना ऐसा, जब हमराही ऐसी हो तो सफर का कैसे कैसे पता चलेगा, और फिर तो ये कहा जाएगा।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की स्वरों से सजी ये रचना अभी आपने सुनी लव मैरिज फिल्म से। 1959 रिलीज ये फिल्म थी। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। साथियों, रात का समय कई बार नींद ना आने का समय भी बन जाता है। सबब कुछ भी हो लेकिन कई बार नींद नहीं आती। कारण तो कोई भी हो सकता है, उन्हीं में से एक कारण शायद ये भी

पोस्ट बॉक्स नंबर 999। इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, 1958 रिलीज ये फिल्म रही थी मित्रों। लता मंगेशकर, हेमंत कुमार की आवाजें थी, कल्याण जी वीर जी शाह का संगीत, प्यारे लाल संतोषी की लिखी रचना थी। मित्रों, हम राही हमारे दिल के हों, थोड़ी देर के हों, जीवन भर के हों, कोई भी हमराही हो, उनका विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में। यदि ऐसे हमराही जो दिल में बसे हों, परिवार में हों, यदि वो आंखों से दूर हो तो दिल के और भी पास हो जाते हैं, जिनकी अनुपस्थिति हमें बेचैन कर देती है।

लता मंगेशकर हेमंत कुमार की आवाजों से सजे इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का था, फिल्म का नाम पतिता, जो रिलीज हुई थी 1953 में।

शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी, मन्ना डे लता मंगेशकर की आवाजें। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है चोरी चोरी। और अब दिल की बातें, कहते हैं दिल ही जाने।

0: लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों से सजी ये युगल रचना अभी आपने सुनी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, आनंद बख्शी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम रूप तेरा मस्ताना, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1972 में।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी समय सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं युगल नगमे। आज के इस कार्यक्रम में आप हैं मेरे साथ, यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ।

ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना थी, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों का सुंदर समन्वय। 1967 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम दो दिलों की दास्तान। साथियों, हर बात का अंदाज जुदा होता है, बातों को कहने का जो लहजा होता है वो जुदा होता है, लेकिन यहाँ किस लहजे की बात हो रही है आइए सुनते हैं।

गुलशन बाबरा की लिखी रचना अभी आपने सुनी। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, महेंद्र कपूर, आशा भोसले की आवाजों का जादू। 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम परिवार।

لتا مگیشکر محمد رفیع کی آوازوں سے سجی یہ رچنا پروفیسر فلم سے ساتھیوں ابھی آپ نے سنی. 1962 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی. شنکر جے کشن کا سنگیت تھا, حسرت جےپوری کی لکھی رچنا. मित्रों, हमराही में हमारे दिल के कहीं या जीवन भर के हमराही का विशेष महत्व हमारी जिंदगी में. आंखों से दूर तो दिल के और भी पास हो जाता है. जी हाँ, अनुपस्थिति तो बेचैन करती ही है, लेकिन कई बार जब ये होता है कि दिल से जो आवाज़ निकलती है वो उधर से कुछ बोलते हैं और दूसरी ओर से कुछ बोला जाता है, तो दिल की बातें होती हैं. इस तरह से दिल की बातें हो रही हैं इस नगमे में.

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की स्वरों से सजी ये रचना अभी आपने सुनी। फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेस 55 जो रिलीज हुई थी वर्ष 1955 में। ओपी नैयर का संगीत था मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना।

मुकेश और हेमलता के स्वरों से सजी ये रचना अभी आपने सुनी विश्वास फिल्म से। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, गुलशन बाबरा की लिखी रचना। ये थी आज के हमराही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। आज के इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के आपने गीत सुने बताए देते हैं वो नाम दोबारा आपको। फिल्म लव मैरिज, पोस्ट बॉक्स 999, फिल्म पतिता, चोरी चोरी, रूप तेरा मस्ताना, दो दिलों की दास्तान, परिवार, प्रोफेसर, मिस्टर एंड मिसेस 55 और विश्वास। और अब हमराही कार्यक्रम समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहामलान ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकोड जेटे अब्लाक्वा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद ममादोव पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एकतरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्याय

न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति परेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यमन सरकार ने हुती के ठिकानों पर बड़ा सैन्य हमला शुरू किया है। सरकारी बलों का दावा है कि उन्होंने लाल सागर तट पर अहम रणनीतिक ठिकानों पर के आसपास बढ़त हासिल की है। यमन की सशस्त्र सेनाओं ने कहा कि उन्होंने सादा, अलजोफ, ताइज और पश्चिमी तट पर हुती ठिकानों पर 1000 से अधिक हमले किए। यमन सरकार की ओर से शुरू किए गए इस हमले में सऊदी अरब की ओर से बड़ी सैन्य मदद दी जा रही है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। प्रातः के 4:11 और 4 सेकंड हुए हैं। साथियों सुप्रभात, नमस्कार। अरुणिमा कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल।

किशोर कुमार की आवाज से सजी ये रचना भी आपने सुनी हम सब उस्ताद हैं इस फिल्म से। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1965 में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, असद भोपाली की लिखी रचना। और अब दिल की मुराद पूरी हुई, घर आ गए हैं दिल में बसने वाले।

मित्रों, हर दिल में हर समय कुछ न कुछ आस पनपती रहती है। उन्हें पूरा करने की चाहत के पीछे हम अपना कर्म करते रहते हैं।

सुबीर सेन की आवाज से सजा ये गीत आस का पंछी इस फिल्म से अभी आपने सुना। 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

पायल बाजी इस फिल्म से अभी आपने सुनी। 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। वसंत देसाई का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। और अब मस्ती की धुन में गाते चले जा रही है

मुकेश की आवाज से सजी ये रचना साथियों अभी आपने सुनी। सचिन देव बर्मन का संगीत था। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम डॉक्टर विद्या। मित्रों, ये जीवन के रास्ते सीधे साफ सपाट तो कदापि नहीं होते, लेकिन फिर भी जीवन को हंसते मुस्कुराते ही जिया जाए तो स्वयं अपना भी भला और हमारे आसपास का माहौल भी सही बना रह सकता है। और यहाँ देखते हैं क्या मिला है किसी को। जी हाँ, कुछ तो है मिला है। कभी कुछ चीज खो जाती है, दिल खो जाती है, कभी कोई गहना खो जाता है, कभी कुछ मिल भी जाता है, चाहे वो दिल हो या गहना। अब यहाँ क्या है सुनिए इस गीत में।

जी हाँ, जो मिल गया वो बहुत है, इस गीत के माध्यम से हमें पता चल रहा है। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी भी खोने पाने से बहुत बहुत बढ़ के होते हैं, और जब वो खोते हैं या कहीं दूर चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है।

बिल्कुल साथियों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो नायाब होते हैं। जब रहते हैं तो शायद उन रिश्तों की परख हम नहीं कर पाते या समझ नहीं कर पाते, लेकिन जब वो रिश्ते नहीं रहते तो लगता है कैसे अनमोल रिश्ते थे। उसी में से एक माँ का रिश्ता है, माँ पिता का रिश्ता है। मन्ना जी महेंद्र कपूर की आवाजों से सजी ये रचना दादी माँ फिल्म से अभी आपने सुनी। 1966 रिलीज ये फिल्म थी। रोशन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी।

लता मंगेशकर की आवाज से सजी ये रचना परक फिल्म से अभी आपने सुनी। 1960 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। साथियों, सलिल चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। प्रातः के 4:42 और 27 सेकंड हो चुके हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

मोहम्मद रफी मुकेश के स्वरों से सजी ये अनोखी रचना आपने सुनी, जिसमें कुछ मजाया अंदाज भी था और संदेश भी। उजाला फिल्म का यह गीत था, 1959 रिलीज फिल्म। शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना। साथियों, जिंदगी हमें अपने आप में बहुत सारा संदेश देती है। अनुभव होते हैं तो हम कुछ सीखते हैं उनसे, और आगे चलकर उन बातों को अपनाना है या नहीं अपनाना है ये भी सोचते हैं, देखते हैं। इसी तरह से जीवन आगे बढ़ता जाता है। ये प्रकृति भी हमें बहुत सारा संदेश देती है। झरने हो, पहाड़ हो, इसकी खूबसूरती हो, हरियाली हो, पेड़ पौधे पत्ते, जी हाँ, जिंदगी यही तो गाती है तराना कि आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो।

आशा भोसले के स्वर से सजी ये रचना अभी आपने सुनी। फिल्म का नाम पगला कहीं का, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1970 में। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

लता मंगेशकर की आवाज से सजी ये रचना आप सुन रहे हैं, जो है आज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। भाभी की चूड़ियां यह फिल्म का नाम। 1961 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। सुधीर फड़के का संगीत, नरेंद्र शर्मा की लिखी रचना। इससे पहले जो गीत आपने सुना किशोर कुमार आशा भोसले की स्वरों से सजा था, जमीर फिल्म से।

रचना के साथ आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब समाप्त होता है. अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए. नमस्कार. कुछ ही पलों बाद समाचार आप सुनेंगे.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद मम्मा 2 पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और चालक दल के कई सदस्य घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चालक दल में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टा चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। वोटों की गिनती

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। प्रातः के 5:11:27 हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, जब तक जीना तब तक सीखना। साथियों, ये विचार अनमोल हैं, इसे जीवन में अवश्य उतारें।
1: ठीक है ठीक है, जाओ, माफ किया।
2: थैंक यू फॉर अंकल गोइंग। चलो धीरे धीरे।
1: अगर तुम लोगों को घंटे भर के लिए छत पे खेलने दिया तो शोर तो नहीं मचाओगे?
2: नहीं।

लता मंगेशकर की आवाज से सजी ये रचना मेली फिल्म से अभी आपने सुनी। 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, सचिन देव बर्मन का संगीत योगेश की लिखी रचना थी। नवजीवन नव सुबह का शुभ आरंभ, सुहानी भोर का पदार्पण, दूर कहीं से आ रही मुरली की आवाज, ऐसा सुंदर संजोग उस भोर को और भी सुहाना बना रहा है।

शाद का संगीत बद किया ये गीत अभी आपने सुना शकील बदायूं का लिखा हुआ ये गीत था सुरैया की आवाज फिल्म का नाम दिल लगी जो रिलीज हुई थी वर्ष 1949 में।

पत्तियां इसी तरह से गाते गुनगुनाते कब समय का पता चल जाता है और कब जीवन का पता ही नहीं चलता है। मुकेश की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना, अनोखी अदा फिल्म से, रिलीज वर्ष फिल्म का 1948। नौशाद का संगीत, शकील पतायूने की लिखी रचना थी।

रोशन का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। इंदिवर की लिखी रचना थी, फिल्म का नाम अनोखी रात। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। आवाज थी मुकेश की। साथियों, सूर्य की सुंदर दर्शनी आभा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। धरती पर सूर्य की सुंदर लालिमा अंधियारे के बाद उजाले का सफर, जीवन को संदेश देती इसकी हर किरण, और हर किरण संदेश।

सुमन कल्याणपुर की आवाज से सजी ये रचना आपने सुनी जानवर फिल्म से। 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। आज के इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ प्रातः के 5:32 और 47 सेकंड हुए हैं। कार्यक्रम में पढ़ते हैं आगे। साथियों, कार्यक्रम में सजते हैं जीवन के सुंदर रंग गीतों के माध्यम से। इन सभी रंगों से सजकर जब भोर सुहानी अपना रंग बिखेरती है तो ऐसा लगता है मानो 7 रंग के सुंदर सपने, ऐसे सपने जो हम सच कर सकें सच गए हों। और जब सपने सच होते हैं तो खुशी में गीत तो इंसान गुनगुनाता ही है।